0: And glorify the praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting. Surah Qaf 50, Ayah 39. Reciting Adhkar and remembering Allah is one of the most effective ways to defeat Shaitan. It is also an effective way to strengthen your Iman. The morning Adhkar will be playing every day. Please tune in to...
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। Inspire FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.oneummah.org.uk.
7: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: इंस्पायर एफएम के प्रोग्राम कैसे हैं, इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफएम को बनाया जाए और बेहतर। आज ही अपनी राय के लिए हमें फ़ोन कीजिए 01582481810 या फिर हमें टेक्स्ट कीजिए 07794818822 पे।
1: This is Inspire on 105.1 FM.
2: I have a

0: Rabiul Awal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
1: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
2: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
3: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
7: Good morning. Subah bekhair. Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Inspire FM pe naya program Family Matters. Mera naam hai Afsha Irfan. और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट हाजरा तलाल।
8: अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सुन रहे हैं फैमिली मैटर्स, एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन तमाम चीज़ों की जो हर घर, हर रिश्ते और हर फैमिली को अफेक्ट करती हैं। यू आर ट्यून इन टू इंस्पायर FM 105.1 और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं। Any questions that you want to ask related to the topic, you can join on our hotline, that is 07779-481-822.
7: अच्छा ये बताएं हाजरा, मतलब इस प्रोग्राम का नाम फैमिली मैटर्स क्यों है?
8: اوکے افشاں، بیفور وی پروسیڈ آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دس پروگرام ان ٹو لینگویجز، اٹس گوئنگ ٹو بی اے بائی لنگول پروگرام، انگلش اور اردو دونوں میں ہم اس کو پریزنٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں باقی لینگویجز کا بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ دیں گے، بٹ فار ایوری ون آؤٹ دیئر ہو آر کمفرٹیبل ان انگلش اور دے آر گڈ ان گڈ اسپوکن اسکلز، دے ہیو گاٹ گڈ اسپوکن اسکلز ان اردو، تو یہ پروگرام ان سب کے لیے ہے، اور جو باقی لینگویجز بولتے ہیں ادر دین انگلش، یہ پروگرام ان کے لیے بھی ہے. سو بیسیکلی دس پروگرام از فار ایوری ون، کوئی آپ کے مسلمز، ہندو، کرسچنز، یا پھر آپ کے سنگل فیملی یونٹ، آپ کے جوائنٹ فیملی یونٹ، ایکسٹینڈیڈ فیملیز، ایوری ون آؤٹ دیئر، دس شو از فار یو.
7: اچھا، تو اگر ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو اردو، انگلش، پشتو، پنجابی، ہر طرح کی کھچڑی اور تڑکا اس میں شامل ہوگا ہر زبان کا؟
8: بالکل جی، کیونکہ ہم نے اپنی سب آڈینس کو کیٹر کرنا ہے.
7: یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے یہ پوری جو ہماری کمیونٹی ہے جو سن رہی ہے وہ ایک ہماری فیملی کی طرح ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں سب سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ جس بھی لینگویج سے ہیں، کسی بھی ہیں، جو ہمیں آتی ہیں، جو لینگویج آتی ہے، جس طرح سے آتی ہے، ہم اس میں ڈالتے رہیں، مکس کرتے رہیں اور آپ لوگ اس کو سنتے رہیں. تو وہی بات آتی ہے کہ یہ جب پروگرام ہم نے شروع کیا تو اس کا نام ہم نے فیملی میٹرز رکھا، کیوں رکھا حاجرہ؟
8: اوکے، سو دس فیملی میٹرز از ہیونگ ٹو ایسپیکٹس. فیملی میٹرز، ہماری فیملی میٹر کرتی ہے، وی آر اے پارٹ آف آر فیملیز. اوکے، سو وی آر بلڈ ریلیٹڈ ٹو سم پیپل، وی آر ایموشنلی ریلیٹڈ ٹو سم پیپل، اینڈ دے میک اے فیملی فار اس، وی فیل سیف ان دیٹ فیملی انوائرمنٹ. اینڈ دا ادر ایسپیکٹ آف دس شو از فیملی میٹرز. ہمارے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں فیملی کے اراؤنڈ، فیملی از این انسٹیٹیوشن، اور جب انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے تو دیر آر سم سرٹن تھنگز ریلیٹڈ ٹو انسٹیٹیوشن.
7: بالکل، جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ آتا ہے. اس میں پیار بھی آتا ہے، محبت بھی، اعتبار بھی. بیسکلی فیملی میٹرز میں آپ کے فیملی کے جو ایشوز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، اور ساتھ آپ لوگوں کے لیے فیملی بھی میٹر کرتی ہے. ہمارے شو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دونوں اسپیکٹس پہ بات کر سکیں. ایک فیملی میں رہتے ہوئے آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی سپورٹ سسٹم بھی ہوتی ہے، آپ کی اسٹرگلس بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی کور کریں گے، اور ایک دوسرے کا جو بانڈ ہوتا ہے فیملی میں ہم اس کو بھی کور کریں گے. کیوں حاجرہ؟
8: آپ کی فیملی از اے ویری سگنیفیکینٹ انسٹیٹیوشن اراؤنڈ یو. اوکے، سو جتنے بھی آپ کے ریلیشنز، سوشلائزیشن، ایموشنز، بیہیویئر، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ ان دا بیک ڈراپ آف کلچر اینڈ ریلیجن.
7: اچھا، تو جب ہم یہ فیملی میٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے حاجرہ، ایک فیملی کے لیے سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک فیملی میں سب سے مین چیز کیا میٹر کرتی ہے؟
8: دیکھیں، ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک فیملی کو بناتی ہیں، اس کو اپلفٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ اے فیملی از، آئی وڈ سے، از لو اینڈ مرسی.
7: بالکل، یہ تو ہے کہ محبت اور رحم، یہ ایک فیملی کی بنیاد ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے لیے اعتبار بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ سپیس صرف بڑوں کو ریکوائرڈ ہوتی ہے یا بچوں کو بھی تھوڑی سی ریکوائر ہوتی ہے؟
8: دیکھیے، ہر جو بھی آپ کے فیملی کے ریلیشنس شپس ہوتے ہیں، ان سب میں سپیس، لو، مرسی، پراپر ایکسٹینٹ آف کمیونیکیشن، اٹ از آل امپورٹنٹ فار ایوری ریلیشن شپ ان یور فیملی.
7: हाँ, तो अक्सर हम कहते हैं ना बड़ों को, हमको भी तो यार हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। हम बड़े अक्सर कहते हैं कि यार थोड़ा सा हटो, हमें स्पेस चाहिए। तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी उनकी अपनी स्पेस थोड़ी रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ हमें उस फैमिली में रहते हुए उनकी स्पेस को समझना पड़ता है, हमें उनको गाइडेंस भी देनी पड़ती है। तो आप क्या समझती हैं कि हमें इस चीज़ को कैसे साथ लेके चलना चाहिए कि हम उनको थोड़ी स्पेस भी दें और थोड़े से उनको गाइडेंस भी दें?
8: ओके सो इस सिनेरियो में व्हाट आई थिंक इज़ के द हेड ऑफ़ द फैमिली, द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो कैसे अपनी फैमिली को लेके चलते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फैमिली के, क्या फैमिली हाउ इज़ द फैमिली इन बॉन्डेड बिटवीन एवरीवन, ये सारा कुछ मैटर करता है। तो आप जब एक हेड ऑफ़ द फैमिली, दे हैव देयर फोर साइटेडनेस, देयर विजन, तो दे नो के हर लेवल पे रिश्ते को कैसे लेके चलना है, हर लेवल पे रिश्ते को कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत, कितना एहतराम, कितना प्यार देना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू कोट समथिंग सम लाइक द मीनिंग ऑफ
7: बिल्कुल
8: सेइंग के अब बच्चों को सबसे ज़्यादा दे नीड लव एंड रिस्पेक्ट।
7: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। जब हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं तो एक फैमिली जो आपके लिए मैटर करती है, और आपके उसमें फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं तो हस्बैंड और बच्चे मैटर करते हैं, आप हस्बैंड हैं तो वाइफ और बच्चे मैटर करते हैं। तो ये एक फैमिली बॉन्ड होता है, ये एक फैमिली होती है आपकी। और फिर जारी बात है, जब फैमिलीज होती हैं तो उसमें ड्रामा भी होता है, बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, बच्चों के ड्रामे होते हैं, बेसिकली हम यही कह सकते हैं बच्चों के ड्रामे होते हैं, तो जिनको हमें डील भी करना होता है। उनके टेंट्रम्स भी होते हैं, उनके डिमांड्स भी होती हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उनकी होप्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें भी एक फैमिली की में का हिस्सा हैं, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। क्यों?
8: देखिए, जब हम फैमिली की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की फैमिली हो जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो आपकी योर स्ट्रेंथ्स एंड योर चैलेंजेस, योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर अ पार्ट। नो फैमिली इज़ परफेक्ट, नो सीन इज़ परफेक्ट, नो सिनेरियो इज़ परफेक्ट। हम वी हैव टू मेक दैट परफेक्ट, एंड वी मेक इट परफेक्ट बाय पुटिंग एफर्ट इन टू डिफरेंट स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव। अपनी जितनी भी हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम कवर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। तो वो द रिजल्ट इज अ मोर बेटर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग।
7: अच्छा, अगर हम वो करें, आपके घर में भी माशाल्लाह आपकी भी एक फैमिली है, मेरी भी एक फैमिली है। मेरी फैमिली में तो जो बच्चे हैं वो ड्रामा भी करते हैं और टेंट्रम्स भी थ्रो करते हैं। आपका क्या हिसाब किताब है?
8: देखिए, वो बच्चे ही क्या हुए जो टेंट्रम्स नहीं थ्रो करेंगे या जो थोड़ा सा जिद नहीं करेंगे। तो व्हेन यू ग्रो अप यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, आप सिर्फ बच्चे से ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इन द कमिंग एपिसोड्स वी आर गोइंग टू टच ऑल दीज थिंग्स, हाउ टू डील विद योर चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद देयर इमोशंस, हाउ टू डील विद योर टीनेज चिल्ड्रन टेंट्रम्स, एंड देन हाउ टू डील योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन।
7: ये तो है, इधर बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होते हैं, इधर पूरे घर के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, उनके साथ साथ माओं के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। आपके घर में भी होता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, आप भी बाउंड, यही होता है।
8: बिल्कुल, वी हैव टू हैव आवर सेल्व्स ऑन टोज कि आर दे फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, हैव दे लर्नड एवरीथिंग, आर दे हैविंग देयर फुल यू नो स्टेशनरी एंड एवरी थिंग विद दैम, सो दैट दे आर नॉट आउट ऑफ एनी थिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि वी हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग टॉपिक्स कमिंग अप इन द फ्यूचर प्रोग्राम्स, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, marriage, the core of many families, as we say, parenting in modern times, and then we have mental health and trauma, grief and loss, divorce, addiction, siblings, different relationships, faith, culture, and raising children. So keep in touch for all these exciting episodes coming up in our Family Matters show.
7: बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं. आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप टच करते हैं. कभी हम उनको सिर्फ छू कर गुजर जाते हैं, टच करके गुजर जाते हैं, और कभी कभी हमें उन सारे सिनेरियोस पे, उन सारे एस्पेक्ट्स पे सोचना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, एडवाइस लेनी पड़ती है. तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को टच भी करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात भी करेंगे, और इन सारी चीज़ों को आगे लेकर भी चलेंगे. हमारे साथ इंशाल्लाह गेस्ट भी आएंगे, मुख्तलिफ फैमिलीज भी आएंगी. हम कोशिश करेंगे आप लोगों की अगर कोई सजेशन है, कोई पॉइंट है जो आप लोग रेज करना चाहें, कोई ऐसा डिस्कशन है जो आप चाहते हैं कि हम करें, तो आप हमें उसके मुतालिक भी सजेशंस दे सकते हैं. तो होता ये है कि हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं, बाकी पार्टिसिपेट उसमें आप लोग करते हैं. हम आपको अपनी फैमिली कंसिडर करते हुए, जो कुछ डेफिनेटली हमारी भी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, हम उस फैमिली के जो हमारे हैं इश्यूज़ हैं या जो हमारे लिए चीज़ें मैटर करती हैं, हम उनको यहाँ डिस्कस करते हैं. तो हमारे साथ साथ आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं. और बाज़ औक़ात होता यह है कि जब आप लोग कुछ सुन रहे होते हैं, किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को एक से नॉलेज ले ले होते हैं, तो आपको बहुत दफ़ा फील होता है कि यार ये चीज़ तो हमारी फैमिली का भी एक हिस्सा है, हमारे उसमें भी एक प्रॉब्लम है. तो कभी कभी बात करने से, सुनने से, मशवरा करने से वो चीज़ बेहतर तक में हल हो जाती है, या आपको एक आइडिया मिल जाता है. आप बिल्कुल
8: जी, आप बिल्कुल आप सही पॉइंट पे बात कर रही हैं. पहले तो मैं आपकी वो वाली बात कैरी फॉरवर्ड करूँगी जिसमें आपने कहा कि वी आर गोइंग टू इनवाइट एक्सपर्ट्स इन आवर प्रोग्राम, जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेट करेंगे, कोई डॉक्टर्स या कोई साइकेट्रिस्ट, रिलीजियस स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. क्योंकि चलते चलते आई एम गोइंग टू गिव अ डिस्क्लेमर एज वेल दैट वी आर नॉट एनी एक्सपर्ट्स. ओके, सो वी विल बी इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स टू आवर शो टू गिव यू एक्सपर्ट ओपिनियन, ताकि आप अपने मामलात को सही तरीके से डील कर पाएँ. और जहाँ तक आपने बात की कि समटाइम्स डिस्कशन से आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, तो दैट इज़ रियली ट्रू. क्योंकि वेन यू सी समवन डिस्कसिंग एंड दे kind of come to a point जो आपको relatable लगता है.
7: related बिल्कुल इसी तरह होता है. जब आप हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत हम दोनों चूँकि फ्रेंड्स भी हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हाँ यार ये तो है, अच्छा चलो ये तो इस तरह भी हो सकता है.
8: Exactly.
7: So you get the point.
8: बिल्कुल
7: ठीक है, you get an idea.
8: तो जब आपको when you find that certain thing relatable, you already start feeling inclusive. तो आपको वो चीज़ के साथ कनेक्शन अपना ऑलरेडी बनता हुआ महसूस होता है कि ओके सो दिस बिलोंग्स टू मी एज़ वेल, दिस रिलेट्स टू मी एज़ वेल, ओके दिस हैपन्ड विद मी एज़ वेल, सो इट इज़ हैपनिंग विद समबडी एल्स ऑल्सो, सो दिस इज़ अ रियल लाइफ सिनेरियो, सो इट कैन हैपन विद एनीवन. तो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट यू नो थिंकिंग कि जो आपके साथ हो रहा है, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड इन समथिंग, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, तो दीज आर द इमोशंस दैट हैपन विद एवरी वन.
7: हाँ, इसमें कोई शक नहीं, छोटी बातें होती हैं, बड़ी बातें. अब बाज़ औक़ात मैं अपनी बात करूं तो सुबह सुबह उठते हैं तो वो घर को देख के, इतनी सारी जिम्मेदारियों को देख के हम लोग भी थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, थोड़े से क्या कहते हैं, अनॉयड हो जाते हैं, बाज़ों का छोटी छोटी बातों पे गुस्सा चढ़ता है. लेकिन होता यही है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप का वो एक स्ट्रेस पीरियड जो होता है, वो जो होती है वो थोड़ा सा निकल जाती है, वो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब हम लोग बातें करें, हम फैमिली के उस पर कोई भी डिस्कशन करें, तो हम इसमें ऐसे पॉइंट्स ज़रूर रेस करें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ को प्रेजेंट करते हैं या हमें डे टू डे लाइफ में हो जाते हैं. चूँकि फैमिली है ना, तो इसमें हर तरह के इश्यूज़ आते हैं. कभी कभी आपके ऊपर बड़े अच्छे दिन भी आ रहे होते हैं, कभी यू वेक अप विद अ हैवी हार्ट एंड हैवी यू नो मेंटल स्टेट. तो ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट का, एक फैमिली का एक हिस्सा है. तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत में जो आपकी बाकी फैमिली होती है ना, वो आपको सपोर्ट सिस्टम देती है. क्या कहती है?
8: दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू प्ले योर पार्ट एज लिसनर्स. हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस, लेकिन आप भी हमें बताएंगे कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई फीडबैक ड्रॉप करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, कोई इशू रेज करना चाहते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू बी अनोनिमस, वी आर गोइंग टू कीप यू अनोनिमस, दैट इज़ फॉर श्योर इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड्स. फॉर टू पार्टिसिपेट, आर नंबर आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, 0777948182 इज़ द नंबर दैट यू आर गोइंग टू use to communicate with us through WhatsApp or direct call. So feel free to drop your thoughts on our first episode.
7: इंशाल्लाह. और दूसरी बात है कि आप जिस जबान में मर्जी है क्वेश्चन करें, क्योंकि हमने कहा ना, ये हर जबान के लोगों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए है, हर हर लाइफ एस्पेक्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए. तो आप लोग इसमें बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में, हम समझ लेंगे. क्योंकि
8: Love doesn't have a language.
7: Exactly. हर तरह की हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पश्तो भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं,
8: हिंदी भी बोल लेते हैं
7: और बाज़ों का थोड़ी बहुत फारसी की भी टांगें तोड़ ही लेते हैं हम लोग. तो इसलिए अब जिसमें मर्जी है बातचीत करें, तो करना चाहे तो हम लोग वी आर रेडी टू लिसन. अच्छा, अब जब हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, जब हम फैमिली के इश्यूज की बात करते हैं, तो इसमें जाहिर बात है बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं. फिर इसमें फैमिली टाइप्स भी आती हैं. ठीक है, एक तो हमारी नॉर्मल सी फैमिली होती है, मियाँ बीवी बच्चे. ठीक है,
8: एग्जैक्टली, जो रेगुलर
7: जर्नल.
8: एग्जैक्टली, When you think about a family, that comes straight away to your mind, like it's a husband and wife and children.
7: And there are lots of dramas and there are lots of events going on. Or घर में एक theater चल रहा होता है. We also, you know, this is a basic family type that we always have, and we are here with the same basic type of the family.
8: Exactly.
7: अच्छा, फिर दूसरी मतलब ये तो हो गई ना nuclear family. और कौन-कौन सी होती हैं?
8: अच्छा, इसमें फिर हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं जो दैट आर मोर पॉपुलर इन आर साउथ एशिया कल्चर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. उसमें आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर इन लॉज, योर अंकल्स एंड आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ. Okay, so they may share the kitchen, they may share a common living lounge or something like that, but they are under the same roof, under the supervision of their grandparents, and they are all living together.
7: हाँ, तो फिर वो होता ना, छोटी फैमिली का छोटा ड्रामा, बड़ी फैमिली का बड़ा ड्रामा.
8: But there is one more thing related to it. There are so many aspects, but the most important thing that we come across with these extended families is the support that everyone gets when they are in trouble, when they need someone, or especially jab the kids are living with their grandparents. To usme sabse badi aur jo pyari baat hoti hai, that is ke wo अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दे स्टार्ट लर्निंग रिस्पेक्ट, लव, केयर, एम्पैथी. ये वाले जो जितने भी इमोशंस और मॉरल्स हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं और उनको फिर साथ लेके चलते हैं. बिकॉज योर हाउस और योर फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल.
7: बिल्कुल,
8: दैट यू आर एनरोल्ड टू.
7: और ये बात भी है कि जिस घर में आपके बुजुर्ग होते हैं, नाना नानी दादा दादी, वो बच्चों से, अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। कहते हैं कि असल से सूद प्यारा होता है। हमें तो हमारी अम्माएं शायद डांट देती हैं, मना कर देती हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे आते हैं तो वही नानियां दादियां जो हैं हमसे दो कदम आगे होकर अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को प्यार करती हैं, और फिर उनके साथ वो टाइम शेयर करती हैं, वो टाइम जो हम शायद अपने बच्चों को इतनी इजीली नहीं दे सकते जिंदगी की मसरूफियात में से बिजी होते हैं।
8: अफशा, आई ऑलवेज लिव्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली और देयर वर टाइम्स व्हेन आई नीडेड सम एल्डर पर्सन टू बी विद मी, टू यू नो बी विद माय चिल्ड्रन, टू गिव देम सम एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर व्हेन दे नीडेड देम। ये चीज़ व्हेन द चिल्ड्रन आर लिविंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चे एक एक्स्ट्रा लव और एम्पथी का एस्पेक्ट सीखते हैं ना, वो आप शायद उनको डायरेक्टली इतना अच्छे से नहीं सिखा सकते। और ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज़िंदगी का ज़्यादा तजर्बा होता है, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू हैव, सो दे ट्राई टू शेयर इट विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, they try their grandchildren to learn from the very start everything that they have learned in all those 60-70 years.
7: isme to koi shak nahi, aur mujhe sabse badi sahulat ye rakhti hai ki jab aapke sath naniyan dadiyan rehti hain to you have like a free time. maine kahin jana hai to bacche kiye dadi ke hawale kiye ya nani ke hawale kiye and I'm off to have my me time. लेकिन जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें सिर्फ दो बंदे हैं तो दैट्स वेरी हार्ड टू गेट द टाइम, लाइक मी टाइम,
8: स्पेशली व्हेन बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दे इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू यू नो गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर देयर ओन टाइम व्हेन दे आर वर्किंग फुल टाइम एंड सपोर्टिंग देयर फैमिली।
7: इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखिए ना, अब हम अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करती हैं तो जिस तरह आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, आपके हस्बैंड भी फुल टाइम जॉब करते हैं, आपके दो बच्चे भी हैं, तो आपके लिए एज अ फैमिली इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है?
8: जैसे मैंने कहा कि आई ऑलवेज वांटेड के कोई भी मेरे साथ, मेरे कोई इन लॉज में से या मेरे पेरेंट्स में से कोई एक जो है एल्डरली फिगर होता, ताकि मेरे बच्चों को एक सपोर्ट मिलती, उनको एक लव और केयर का एलिमेंट मिलता, और मुझे भी थोड़ा सा एक नॉट काइंड ऑफ एस्केप बट एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, कि इन द बैक ऑफ द माई माइंड आई वुड हैव के ओके आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम माई वर्क इन रीचिंग होम एंड थिंग्स लाइक दैट, तो देयर इज समवन ऑलरेडी इन माई हाउस टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, दे कीप एन आई ऑन माई चिल्ड्रन, दे कैन ऑफर देम फूड व्हेन दे नीड इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
7: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि थोड़ा आपको एक मेंटली रिलैक्स होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी दो फैमिलीज, एक हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली, नॉर्मल फैमिली जो कि हमारी एक है, और दूसरी फैमिली हो गई हमारी एक्सटेंडेड फैमिली।
8: आपकी इसी डिस्कशन को थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाऊँगी बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, कि फैमिली में जो आपका सपोर्ट का एलिमेंट होता है, then it all goes back to how understanding you are of the needs and wants of your family members. aapko aap agar if you want to offer your full support to aapko bhi support mili bhi hoti hai, isiliye aap kisi ko support de rahe hote hain, ya vice versa sometimes aisa bhi humne dekha hai ki aap को किसी ज़माने में सपोर्ट नहीं मिली होती फैमिली से, तो यू आर नॉट वेरी गुड एट ऑफरिंग सपोर्ट। तो हमने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हुए, एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हुए, दे जस्ट स्पेंड देयर होल लाइफ इन वर्किंग टूवर्ड्स द फैमिली बेटरमेंट, बट दे डिडेंट गेट एनी
7: time off
8: reward or you know appraisal or encouragement or things like that in the end.
7: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, इन सब चीज़ों को भी हम काउंट करते हैं जब आप फैमिली में रहते हैं या आप अकेले रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि कहीं आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, कहीं आपको ड्रामा ज़्यादा मिलता है, तो अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें और न्यूक्लियर फैमिली में भी आप लोगों को बहुत कुछ जो है तो वो एडजस्ट करना पड़ता है. तो लिसनर्स, अब ऐसा है कि वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह.
9: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
10: Inspire FM.
11: Inspire 105.1 FM.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
13: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
14: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
0: In Rabiul Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
15: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
16: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
17: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
18: But
17: it costs £10 per inch.
18: And that's too expensive.
17: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
18: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
19: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
8: Welcome back after the break to Inspire FM 105.1. As you know that we are on our first episode of Family Matters, all the matters related to family, and family itself matters to you, all the emotions, all the aspirations, all the love, mercy that you have with your family members, it matters a lot. And how you carry with all those emotions with your family. And we talked about, Afshan and I talked about two types of families so far. That is the nuclear family system and the extended family. Yes, Afshan.
20: And now we are going for the third type of family. Ek teesri bhi hoti hai na. बल्कि तीसरी क्या तीसरी चौथी भी हो सकती है चौथी भी होती है तो हम तीसरी फैमिली को क्या कहते हैं
8: जी बेसिकली फैमिली तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया इट्स वेयर यू फील कंफर्टेबल वेयर यू फील योरसेल्फ ओके तो दैट इज दोज पीपल आर योर फैमिली लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स तो एक सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है एंड इन माय ओपिनियन They are the real, you know, heroes.
20: Heroes.
8: Yeah.
20: Because exactly. They have the responsibilities of both the parents.
8: Exactly. Uh-huh. They are doing the role of a mother and a father at the same time to their children.
20: हाँ ये तो है लेकिन होता क्या है कि सब कोशिश करते हैं एक family बनाने की एक घर बनाने की पेरेंट्स बड़े शौक से अपने बच्चों की शादियां करते हैं उनके साथ एक एक एक कंप्लीट हाउस का एक कंप्लीट फैमिली का उनका जो एक होता है ख्याल होता है वो उसको लेके चलते हैं लेकिन कभी कभी बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ऐसे अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वो फैमिलियाँ न्यूक्लियर फैमिली से सिंगल पेरेंट फैमिली बन जाती है तो ये कोई ये बहुत मुश्किल वक्त होता है फैमिलीज के लिए
8: इट ऑब्वियसली इट टेक्स करेज टू रेज अ फैमिली अलोन अ चाइल्ड अलोन एंड स्टिल स्माइल
20: इसमें तो कोई शक नहीं
8: एग्जैक्टली
20: और भारी जिम्मेदारी होती है
8: बिल्कुल और ऐसा अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इट हैपेंस के कोई भी स्पाउस दे आर नॉट देयर एनी मोर फॉर द चाइल्ड तो द मदर और द फादर हैज टू रेज देयर चाइल्ड और द चिल्ड्रन ऑल बाय देमसेल्व्स तो इसमें हमने ये तो बात कर दी कि दे आर द रियल हीरोज ठीक है तो इसमें हमें एक जनरली ओवरव्यू से नजर आता है कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस अटैच टू इट
20: हाँ इसमें तो है देखिए बच्चे को जिंदगी के हर मामले में हर एस्पेक्ट में हर पार्ट ऑफ लाइफ उसको दोनों की जरूरत होती है क्योंकि कहीं जैसे एक अदर मदर अपने बच्चों को अकेले रेस कर रही है एज अ सिंगल मदर सिंगल पेरेंट तो बहुत सारे जगह ऐसी आती है जहां बच्चों को एक बाप का एक फादर फिगर की जरूरत होती है ठीक है इसी तरह अगर एक फादर अपने बच्चों को रेस कर रहा है बिल्कुल अकेला है वो एक सिंगल पेरेंट है तो उसको भी बहुत जगहों पर फील होता है कि यार अगर इनकी माँ होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता
8: पेरेंट्स ट्रांसफर देयर क्वालिटीज इन टू देयर चिल्ड्रन ऑल द मदरली क्वालिटीज ऑल द इमोशनल क्वालिटीज यू नो टेकिंग केयर ऑफ द हाउस टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली लव taking care of all the relationships that comes from the mother usually I'm talking generally and all the emotional dealing your initiative your decision making it is coming from your father generally and a good combination of both of your parents is also giving you all the you are inheriting all those good qualities from both of your parents as well but with the mutual effort of both the parents you become a very you know a strong person
20: a successful person as well lekin aapko ek bade mazey ki baat bataun hajra maine us din ek report padhi hai jisme kehte hain ki zehanat zyada tar maa ki taraf se aati hai to iska matlab hai agar bachche zehin hai to maa bhi zehin hai
8: बिल्कुल ऐसा सर्वे एक मैंने भी पढ़ा है ऐसी एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है लेकिन मेरा ख्याल है कि जब दोनों पेरेंट्स मिलकर बच्चे को एक अच्छा इंसान रेज करते हैं तो उसमें वैसे ही उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी गोज टू अ हायर लेवल
20: एग्जैक्टली
8: एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेटर
20: बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है देखिए ये तो एक एक एक आर्टिकल की बात हो गई ना कि माँ जहीन है तो बच्चा जहीन है लेकिन इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें दोनों का किरदार शामिल होता है پیرنٹس کا, بوتھ پیرنٹس, فادر اور مدر, دوسرا بالکل اگر وہ ماں سے ذہانت لیتے ہیں, سگڑاپا لیتے ہیں, تو باپ سے کریج لیتے ہیں, دنیا کو اینالائز کرنے کا ایک کا وہ لیتے ہیں, پرسپیکٹو لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اگر ہم بات کریں سنگل پیرنٹ کی, تو اس میں پھر ان کے لیے یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم ساری فیملیز کو دیکھ لیں, نیوکلیئر فیملی کو دیکھ لیں, ایکسٹینڈڈ فیملی کو دیکھ لیں, تو سب سے مشکل جو ہے, جو بہت اسٹرگلنگ, بہت چیلنجنگ فیملی ہے, وہ ہے سنگل پیرنٹ فیملی.
1: اس میں ناٹ اونلی دیٹ دا پیرنٹ, دا سنگل پیرنٹ از سٹرائیونگ دیئر بیسٹ ٹو ارن دا لائیولی ہوڈ, being a father figure and a mother figure at the same time, and being a friend of their children and understanding their all their needs, and their judging their strengths and areas to improve. Isme humne dekha hai ki the children are also coming across certain difficulties when they are going out and socializing with their peers, when they are attending the school, when they are attending their clubs or any other social event in the public places.
20: اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے بچوں کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, وہ بہت کچھ لیک کرتے ہیں وہ. لیکن ہاں, I salute to the parents who have raised, میں جانتی ہوں کچھ ایسی سنگل مدرس کو کہ دے ہیو دیئر چلڈرن ویری بیوٹیفلی, ماشاء اللہ. بینگ اے سنگل پیرنٹ اور اسٹرگلنگ ود لاٹس آف ڈیفیکلٹیز اینڈ اسٹل دے مینج ٹو ریز سم ویری گڈ, ویری ٹیلنٹڈ, ویری بریو چلڈرن. تو یس اٹس ہارڈ, بٹ الحمد للہ وی ہیو سین سچ اسٹوریز کہ جہاں پہ سنگل پیرنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک نیوکلیئر فیملی سے یا ایکسٹینڈ فیملی سے اچھا بچوں کو ریس بھی کیا ہے اور ان کو پڑھایا بھی ہے, ان کو بڑھایا بھی ہے.
1: اچھا, آپ نے بات کی کہ دیئر چلڈرن لیک سم ابلٹی اور سم تھنگ, ان مائی اوپینین دے ڈونٹ لیک اٹ. آپ اتنا ابزارب کرتے ہیں, دا چلڈرن آر لائک اے اسپنج, تو دے ابزارب ایوری تھنگ دیٹ از ان دیئر سراؤنڈنگ. تو آپ کو جتنا ایکسپوجر ملے گا, آپ کو جو جتنے ایموشنس کا ایکسپوجر ملے گا, جتنی اپرچونیٹیز کا ایکسپوجر ملے گا, یو آر گوئنگ ٹو ابزارب ایوری تھنگ دیٹ یو آر ایکسپوزڈ ٹو.
20: ڈیولپ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ تو ساری وہ سارا جو اسٹرینتھ ہے یا ساری جو ایک کہتے ہیں اسٹرگل ہے یا ایفرٹ ہے, وہ پیرنٹس کے اوپر ہوتی ہے کہ جتنا اسٹرانگ پیرنٹ ہوگا, it's hard, it's very hard to become that strong, لیکن بعض اوقات بعض پیرنٹس, ایون سنگل پیرنٹس, اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ کر لیتے ہیں, اس نہج پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے بڑا کر لیتے ہیں.
1: لیکن افشا, ڈونٹ یو تھنک اگین اٹ از سرکمسٹینشل اور کنڈیشنل, جہاں پر اف دیٹ سنگل پیرنٹ از کمنگ فرام, اگین اف دے آر کمنگ فرام اے سنگل پیرنٹ فیملی,
20: یس,
1: تو ڈزنٹ اٹ ملٹی پلائی ان دا چائلڈ کے دے آر آلریڈی اسٹرگلنگ ود دیئر فیز آف بینگ ریزڈ ایز اے,
20: یس, وہ یہ تو ہے. اے چائلڈ فرام اے بروکن فیملی

0: then that parent is a very strong parent. But if the parent is also carrying the trauma, और अभी तक उसमें वो चीज है तो उसके बच्चे फिर ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में आ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स या मदर या फादर अपना ट्रॉमा भी उनमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं.
1: तो दैट टेक्स अस टू दैट लीड्स अस टू अनदर टाइप ऑफ फैमिली दैट इज योर चोजन फैमिली. के जब हमारी चोजन फैमिली हमें एक बड़ी अच्छी सपोर्ट दे रही है, एक बड़ा अच्छा हमारे लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए उसने बना दिया है, तो हमारी फैमिली की तरफ से अगर कोई चीज़ लैक कर रही है तो वी आर गोइंग टू फुलफिल दैट और वी आर गोइंग टू मेक अप दैट डेफिशिएंसी फ्रॉम आवर चोजन फैमिली.
0: बिल्कुल, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास आपने जो फैमिली चूज की है या आपकी जो चोजन फैमिली है, जो अब चोजन फैमिली में आप खुद भी चूज करते हो और आपके कोइंसिडेंस भी बनती है. जैसे फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आप होता क्या है कि आप किसी से मिलते हैं, यू क्लिक एंड देन यू बिकम अ फ्रेंड एंड दैट फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू द फैमिली. बिल्कुल सही. हम चार फ्रेंड्स हैं जो कि मिले, फिर फ्रेंडशिप शुरू हुई और अब हम कहते हैं कि ये हमारी चोजन फैमिलीज हैं क्योंकि हमारा एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट. हाँ, हम खाने बड़े अच्छे एक दूसरे को भेजते हैं जिससे हमारा बॉन्ड और भी अच्छा होता है क्योंकि luckily I have so good friends that they are the expert cooks. So if I am hungry and I don't want to cook, I can just give it a call and have a food. तो ये तो हो गई मेरी chosen family, मेरी friends family.
1: तो food is the support that you are getting from your friends, right?
0: So much of it. But no matter what, I've got some lovely, beautiful ladies as a friend, and I really appreciate my luck for having them.
1: Exactly.
0: ठीक है, तो इसके साथ बिल्कुल फिर आपके साथ, जैसे अब आई एम स्टे एट होम मॉम बट शी इज अ वर्किंग लेडी एंड शी हैज लाइक कोलीग्स, तो जिनके साथ आप काम करते हो वो भी आपकी एक फैमिली बन जाती है.
1: बिल्कुल, और उस फैमिली का अगर आप, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 इन एन एनवायरमेंट, तो उस फैमिली का अच्छा सपोर्टिव होना, अंडरस्टैंडिंग होना, अकोमोडेटिंग होना, इट्स अटरली इम्पॉर्टेंट. अगर आपके कोलीग्स ऑन योर वर्क स्पेस दे आर अंडरस्टैंडिंग यू एंड दे आर देयर टू शेयर योर बर्डन और दे आर फुली अंडरस्टैंडिंग योर हार्डशिप्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो आपके लिए एक किसी भी जगह पे काम करना बहुत आसान हो जाता है. और लकीली थ्रू आउट माई करियर आई हैव फाउंड सम वेरी लवली पीपल ऑन माई वर्क प्लेस जिनको मैं आज तक नहीं भुला सकी.
0: ओह दैट्स सो लवली. यही चीज होती है, यही वो फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी चोजन फैमिली बन जाते हैं, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. तो अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन बिकॉज दीज फ्रेंड्स आर देयर फॉर यू इन योर हार्ड टाइम्स, in your good times, in your bad times,
1: and without judging you, without
0: judging you, yes,
1: yeah, exactly, without passing an opinion on you, without commenting on your state, on your condition, they are there for you in your hard time.
0: इसमें कोई शक नहीं है.
1: What do you think about neighbors as a chosen family?
0: Neighbors का तो बहुत आगे. देखें, अगर हम neighbors की बात करते हैं तो even के हमारे religion में है पड़ोसियों का बहुत हक है. वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि these are the first responders. खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई अच्छा बुरा होता है तो योर नेबर्स आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, दे आर क्लोज टू यू, दे कम अर्ली देन योर फैमिली. ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों को देख लें हमेशा. आप अल्लाह ना करे कभी कोई अच्छा बुरा, तकलीफ, दुख, खुशी कुछ भी होती है, सबसे पहले इंसान दोस्त को कॉल करता है कि यार जरा पहुंचो, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया.
1: स्पेशली द इमिग्रेंट फैमिली लाइक
0: हम,
1: एग्जैक्टली, वी आर अवे फ्रॉम आवर होमलैंड, वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिली, वी डोंट हैव अ फैमिली हियर. Or we have a very minimum amount of relatives around us here in England. So our neighbors are our families.
0: Families.
1: Yeah.
0: और even हमारे मजहब में है कि आपके घर के साथ जो 10 घर आते हैं वो आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों का हक तो बहुत ज्यादा है. हमारे मजहब में भी हर अच्छी चीज उनके घर भेजने का है, हदिया देने का है, तोहफे देने का है, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आने का है, और ये हमारे रिलीजन के पार्ट है.
1: सो मच सो के इफ यू नो दैट योर नेबर इज नॉट एज अफ्लुएंट एज यू आर एंड

0: तेरे
1: बोल के लब आजाद हैं तेरे लहरों के दोश पे आवाज के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस शो में, इसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। आज का ये अफन लिस्टन आजाद शो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जी। आज आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा हमको, क्योंकि हमारी आवाज़ थोड़ी देर में बैठ जाएगी लेकिन वादा हमने किया हुआ है मंडे और वेंसडे का, इसलिए वादा पूरा ज़रूर करेंगे हम। आज हमने सोचा अगर रेगुलर डेज में होते, जो महीना पहले कि जो मी टाइम जो चल रहा था हमारा, जिसमें हमने ये बात की थी, 3 महीने का मी टाइम जो है, बल्कि 4 महीने का हमारा, उसका पार्ट 2 जिन लोगों को चाहिए वो ज़रूर जी। अगला शो जो है हमारा मी टाइम वेंसडे को जो इंशाल्लाह शो होगा वो होगा मी टाइम का पार्ट 2, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, कुछ चीज़ें हमें समझ आती हैं आसानी से, कुछ चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, वो सारी बातें करेंगे आपके साथ और बहुत सारा इन्जॉय भी करेंगे। तो आज का ये शो हमने आपके लिए किया है ताकि हमारी तबीयत भी ठीक हो, आपकी तबीयत भी ठीक हो। नया नया मौसम और ठंड जो है वो लगती है, गर्म सर्द हो जाते हैं, सर्द गर्म हो जाए, गर्म सर्द हो जाए, अजीब बात है ना, एक ही फ्रूट है, गर्मियों में आता है उसको गर्मा कहते हैं, सर्दियों में आता है उसको सर्दा कहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम भी गर्मियों सर्दियों में आपके साथ आके बैठ जाते हैं, गप लगाते हैं। नंबर है स्टूडियो का 9725019390, और व्हाट्सएप नंबर है तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे साथ कनेक्टेड रहने वाले लोगों के लिए 9727413883। और आज का थैंक्स गिविंग का माहौल ख़त्म हो चुका है, इसलिए लोग छुट्टियों से वापस आ चुके हैं, और आज हम उम्मीद करते हैं कि शो जो है वो हमारा जैसे रूटीन में लोग प्यार मोहब्बत करने वाले मेहरबान आते हैं और अपना अपना हिस्सा डालते हैं शो में, तो आज तमाम लोग आएंगे। सो चलिए देखते हैं जी, पहला कॉलर कौन है आज का रेडियो आज़ादी रौंदिया।
2: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लगता है टर्की खा के और सूप शूप पी के फिट हुई हैं आप
2: बस जी हाँ बिल्कुल, टर्की की तो बड़ी मजे की होती है वाकई में, और स्पेशली मुझे सिर्फ एक टर्की पसंद है आजादी, वो है जिमीस की।
1: जिमीस
2: और मैं जी, मुझे इतने सालों यहाँ पर मैं रही हूँ यूएस में, लेकिन मुझे कभी भी ऑनेस्टली मैंने टर्की नहीं खाई थी जब तक मैं डैलस में नहीं आई थी, और मैंने बिलाल भाई के हाथ की, क्योंकि वो इतनी जूसी, इतने मजे के उसमें मसाले डालते हैं ना, तो वाहिद वो टर्की है जो मैं खाती हूँ। वरना मुझे उसके साथ जो पूरे लवाजमात जो होते हैं, सॉसेस वगैरह, मुझे नहीं समझ
1: आता। टर्की वैसे बड़ी खुश्क हो जाती है, लेकिन जब तक आप उसको मक्खन के फेंटे ना लगाए ना, उसको मक्खन के डोबे लगाने पड़ते हैं उसके ऊपर रखने के लिए, जब तक वो ना लगाएं चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए मक्खन बहुत जरूरी है इस तरह की चीजों को पकाने के लिए।
2: जी बिल्कुल सही बात है, और आपका लास्ट जो शो था बड़ा मजे का था, और वो जो आपने बात की थी चाय वाली बात, तो बहुत ही मजे की।
1: कौन सी बात, हम तो मौके पे करके निकल लेते हैं, कौन सी बात थी
2: आपने, आप बता रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ चाय आप भूल गए थे रख के, तो आपने कहा हो सकता है मैंने माइक्रोवेव में छोड़ दिया, हो सकता है यहाँ रखी और आपको फिर
1: अलमारी से निकले
2: जी
1: हाँ जी, तो मैंने कहा मैं तो चलो फिर खुशकिस्मत हूँ, मैंने चाय की प्याली रखी थी जो निकल आई, आप लोग तो रिश्ते वहाँ रख के, सेहत वहाँ रख के, रब के साथ रिश्ते अलमारी में रख के भूले हुए हैं
2: वही तो आपने फिर हमारी जो है ना, हम हंस रहे थे तो आपने कहा एटलीस्ट चाय रखी है, रिश्ते ऐसे नहीं रखे, बाकी हमारे तो हाल ही बुरा है।
1: हमें कई लोगों ने ना दिमाग को भी वहाँ रखा हुआ है कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब हो जाएगा कहीं, हालांकि ये पैराशूट की तरह है, खोलेंगे तो काम करेगा, तो हम में से कई लोगों ने ब्रेन भी अपने अलमारी में रखे हुए हैं कि इसको क्या जरूरत है इस्तेमाल करने की।
2: सही बात है, और आज आपका जो मिनट ऑफ द डे था बहुत खूबसूरत था, इल्म की कीमत और कमालात। अच्छा मुझे ये बताएं आजाद जी कि ये जो आप लिखते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो कैप्शनिंग जो आप करते हैं, ये कौन करता है?
1: ये भी हमने करने होते हैं और कौन करता है, उस वक्त जब सुनते हैं आदमी ना, पहला क्लिप पूरा सुनते हैं 2 मिनट का, फिर ये देखते हैं कि ये सही बैठा है कि नहीं बैठा, और अगर इसमें ये कम्प्लीट है कि नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि तशनगी रह जाएगी या कोई बंदे का कोई एंगल रह गया है, तो ये जो असल मेहरबानी और कमाल उस बंदे का है हमारे जो ये शोज़ सुनते हैं और उसके बाद इसके क्लिप्स बनाते हैं, मेहनत सारी उनकी है, फिर जब हमारे पास आता है तो हम उसकी नोक पलक हल्की फुल्की संवारनी होती है, तो जो कि बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर उनको जितनी समझ आती है वही बड़ा होता है क्लिप, कभी मुझे बड़ा छोटा करना हो तो और बात है, और उसके बाद तो नाम और नाम उसका फिर वहीं पर आता है।
2: अजा जी इतने यूनिक, इतने डिफरेंट होते हैं ना, और हर आपका जो मिनट ऑफ द डे होता है उसका बिल्कुल मतलब वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है, और उसमें जो आपने बात की है ना इल्म की, कि मतलब हमारे लोगों के लिए जो कि ब्लेस्ड हैं, उनको समझ आ गई है, वो विजनरी हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो अगर मतलब ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो चीज होती है ये हमारे अगर फर्ज करें कोई करीबी है तो हम किस तरह से उसको हैंडल करें अगर उसके पास इल्म नहीं है, और अगर एक इल्म वाला बंदा साथ है तो ये उसके लिए ब्लेसिंग है या ये और ज्यादा उसके लिए परेशानी की बात है?
1: असल में ये तो डिपेंड करता है ना वो बंदा क्या है। अगर वो जहालत की ज़िंदगी को अपनाता है और जहालत की ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके लिए तो अकल वाला बंदा तो मौत है, वो हर बात में उसको निगेशन होगी। तो इसीलिए जब हम रिश्तों में जब रिश्ते बनाने लगते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप किस पैथ के ऊपर हैं। आप जिस रास्ते पे होते हैं उसी रास्ते की बस लेते हैं, उसी रास्ते की ट्रेन लेते हैं, उसी रास्ते का जहाज़ लेते हैं ना। तो अगर आप किसी और रास्ते की बस ट्रेन और जहाज़ लेंगे तो कितना तंग होंगे आप, न मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ख्वारी भी होगी, यू नो रास्ते में एग्जॉस्टन भी होगी, रिसोर्सेज भी हो सकता है कम हो जाए, परेशानी, जहनी खिलफिशार, ये जितना इस स्ट्रगल में होता है उतना ही रिश्ते में भी होता है इंसानों को। तो दूसरा बंदा इल्म चाहता है, इल्म की रोशनी में रहना चाहता है कि नहीं, उसकी चॉइस है ये कि नहीं, और चॉइस है तो उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब वो एक्शंस लेंगे तो उनकी ज़िंदगी आसूदा सुकून में रहेगी और मामलात भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो गलत चॉइस कर लेते हैं, ज़िंदगी उनकी जहालत का जो पेश खेमा है, यानी कि वो जो भी चीज़ें वो करते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो सिर्फ जज्बात घुसेड़ के, जज्बाती बातें करके और इमोशनल किस्म का ड्रामा करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है इल्म फजल वाले लोग और यू नो इल्म हिकमत वाला बंदा या बंदी उनके लिए तकलीफ़ का सामान है। तो इसलिए पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम करना क्या चाहते हैं। लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इल्म जो है ये इस तरह फलां करने से हासिल हो जाएगा, फलां करने से हासिल हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हासिल हो जाएगा। इसके लिए ये एक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे खुशी का लिखा था ना मैंने आज, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। इसको टेस्ट शुरू में हो सकता है आपको ये पसंद ना आए ट्रूथ के बारे में, लेकिन फिर जब आप इसका टेस्ट एक्वायर कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये हर एक के लिए नहीं होता। जैसे मुझे मैथ्स और बहुत मेरा ब्रेन जिस तरह का बना हुआ, मैं जितना मर्जी जोर लगा लेता बचपन में और अब भी कि मुझे मैथ्स और उस किस्म की चीज़ें नहीं, मैट्रिक्स क्या है, यू नो ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये फलां क्या है, मुझे नहीं समझ आती थी, पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। तो मैं जोर लगा कर कहूँ कि नहीं मैं सीख जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा और इसमें मैं PhD करके झंडे गाड़ दूँगा, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपके जहन के लिए, आपकी बिसात के लिए, आपकी सोच के लिए होती नहीं। हर बंदा एक तरह का नहीं रब ने पैदा किया, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ गिफ्ट का सेट होता है और मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, और ये इसलिए किए गए हैं कि लोग कम्यूनिटी की सूरत में एक दूसरे के साथ चल सकें। तो किसी को क्या गिफ्ट मिला है, किसी को क्या गिफ्ट मिला हुआ है, किसी को इन दोनों गिफ्ट्स को जोड़ने का गिफ्ट मिला हुआ है, तो हर बंदा अपने आप को पहचानेगा, अपने गिफ्ट को पहचानेगा, उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। किसी से इम्प्रेस होकर आप आलिम से इम्प्रेस होकर आप आलिम या उसका इल्म आपको नहीं मिल जाएगा। आप बेसिकली आपने जो 20-30-40 साल जो आपका जहन जिस तरह का बन गया है या बन रहा था और आप उसी तरह सोचते हैं और समझते हैं चीज़ों को, कई लोग सारी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सब्जेक्टिव चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। कई लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सोचते रहते हैं परेशान, उनको सोचने का मतलब है परेशान होना, थक जाते हैं, दर्द सर में होने शुरू हो जाता है, हर चीज़ को आधे में छोड़ देते हैं। कई लोग जो हैं उसको इन्जॉय करते हैं तमाम चीज़ों को। तो ब्रेन किस तरह का बना हुआ है, आप उससे क्या लेना चाहते हैं और किसी के पास क्या है जिससे मिलकर हो सकता है आप उनसे ले लें। कई चीज़ें मैंने अपने लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उस काम के एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, उसकी सर्विसेज मिलती हैं, आप वो ले लेते हैं और फिर अपने गिफ्ट में ज़्यादा टाइम लगा के तो फिर आप उसको दुआ अच्छा करते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं होती इल्म के साथ।
2: तो मतलब ये कि हमें हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट?
1: जरूर,
2: सोचने में और खुश रहने में।
1: या फिर हमारा जहन किस किस्म का है, हमारा कई लोगों का जहन बड़ा सिंपल तरीके से ऑपरेट करता है और वो बहुत निचले लेवल पे चीज़ें करके कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ों की वो वैल्यू नहीं होती। हर बंदे का दिमाग इस तरह का नहीं होता कि वो चीज़ों को फिगर आउट करने बैठे। डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट किस्म के ब्रेन्स होते हैं लोगों के पास और उसके हिसाब से चीज़ें, आप अगर उस ब्रेन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ चाहते हैं और शिद्दत से चाहना शुरू हो जाएं तो फिर तो ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो चीज़ आपको उस तरह नहीं मिल सकती। तो इसमें से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लोग हैं हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर 9725019390। लगता है जी लोग थैंक्स गिविंग मना के आ गए हैं। और व्हाट्सएप पे एक मेहरबान है हमारे साथ, बड़ी दूर से, किसी और कॉन्टिनेंट से शायद। वीडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
0: जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: सर जी क्या हाल चाल है, ठीक हो?
0: सर जी बिल्कुल बढ़िया। सर जी आज मूड लाइट है, I was, मैंने आपको पहले मैसेज भी किया था, like I will join the show in the second half, but then I couldn't control myself, and then I learned like it's my impulse.
1: ठीक है.
0: मैं अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम था. अब बात करते करते मेरा दिल इतना धड़क रहा है, like it feel like I just ran a marathon.
1: No, bro, ये जब जब ना आपके दिल में बहुत कुछ होता है, ये पता है क्यों होता है? ये feeling बंदे को तब आती है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको एक धड़का सा लगा होता है कि पता नहीं वो मैं वैसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या वो बात उस तरह समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी, या मैं समझा भी पाऊंगा या नहीं. तो इसके लिए हीरा सिंह जी, आपके लिए भी और दूसरे ये सोचते हैं ना आप इस तरह, ठीक है?
0: बिल्कुल 100%.
1: हाँ, ऐसे नहीं सोचना. इसको सोचना ऐसे है कि मैं, मेरे पास जो है, मैं जाऊंगा ऑन एयर. अगली दफ़ा इस जहन को ये रखिएगा, ये जो जितना दिल धड़कना है या जो मसला है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा. फ़ोन पे बात करते हुए आपका दिल नहीं धड़कता, ठीक. ये जो फीलिंग है ना कि और भी लोग सुन रहे हैं और भी मामलात हैं, उसकी वजह से दिल में ये रेसिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है. आपने सिर्फ ये सोचना है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने की एक जगह है, उनको मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, मैं जो हूँ जो दे सकता हूँ और जैसा भी हूँ, मैं ऑन एयर जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा, उनको जो बात चाहिए होगी वो ले लेंगे, या वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो अपने काम की बात मुझसे निकलवा लेंगे. ये उनका काम है, मेरा काम है हाजिरी देना, ठीक है? बस आप जब इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर रेसिंग करना या वो जो ना थोड़ा सा ओवर चीज़ का हो जाना या घबराहट हो जाना, और उसमें फिर आदमी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, आप आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं. मसला ये है कि हम तब क्यों आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, जब इमोशन टकरा जाते हैं लॉजिक के साथ. तो आपने जब बात करनी होती है तो सिर्फ सोचा करें कि हमने एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए बैठे हैं, उस चीज़ को जब फिगर आउट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसमें इमोशन डालना, उसमें पैशन डालना और बाकी चीज़ें हम डालेंगे. लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से खोल कर समझने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से जो भी आप बात करोगे ना, कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा शो में, या आपसे मैं कह रहा हूँ और आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ कि आपने सिंपल कंट्रीब्यूशन देने आना है. मुझे जितना चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, जिस तरफ मुझको लेके जाना है, वो मेरा काम है. आपका काम है बस ढीला छोड़ दें, आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं.
0: जी सर,
1: ठीक, इतना समझ गए?
0: समझ गया.
1: आइंदा इसको, इसी बात को जहन में बिल्कुल ऐसे रख के आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर फ़ोन के अपने कॉल आपने जब करनी है तो आपने कहना है, लंबा सा एक सांस पहले लेना है आपने, ठीक है? पूरा एक लंबा सांस लेना है, एक दो तीन, ताकि वो बिल्कुल जो यू नो आप काम डाउन होकर रिलैक्स हो जाएं. फिर जब आप ऑन एयर आएंगे, फिर मैं जब आपसे बात करूँगा, तो उसके बाद हम फिर ढीला छोड़कर एक क्वेश्चन होगा आपके जहन में या एक एंगल होगा जिसको आप लेके आएंगे. जब बहुत सारे एंगल जहन में होते हैं ना, तो फिर भी ये हो जाता है कि पहले कौन सा बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना. तो हर रोज़ अपने जहन में सिर्फ एक सोच, एक मसला या एक एंगल लेके आपने ऑन एयर आना है. बाकी मैं बातों बातों में एंगल भी निकाल लूँगा और मसले भी मैं खुद ही निकाल लूँगा. ठीक हो गया? Would that help?
0: Definitely. It makes sense. And again, it's like lots to observe, lots to absorb. Or mera, jaise aapne abhi kaha, mind waise hi kaam karta. There are too many things. Or itni entangled ho chuki hai. I'm trying to put them one by one. But like, you know, jo pichle dahakon ki jo soch ka jo pattern ban chuka hai, usse todne mein. अभी आई एम फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स.
1: ओके, एक प्रॉब्लम की हो रही है फिरोज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਆਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 25-30 ਸਾਲ ਮੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਮੇ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. क्योंकि वो कभी कभी होता है, और वो एक आध चीज़ होती है, उसके बाद पूरी थेरेपी होती है जहन के ऊपर, जो आप खुद आपने करनी है अपने जहन के ऊपर. जो काम 30-25 साल में ख़राब हुआ है, उसको कम से कम 25-30 महीने सोचें आप, ठीक है? कि 25-30 महीने तो कम से कम देना एक चीज़ को, जिसमें 30 साल को ब्रेन वेव से लेके न्यूरो पैथवे से लेके सॉफ्ट एंड हार्ड इंडॉक्ट्रिनेशन से लेके सोचने का एक तरीका बन गया है। सर्टन चीज़ों का रिएक्शन आपके माइंड में बन चुका है पहले से। अब इन तमाम चीज़ों को चेंज करना है तो इसमें आपने बिल्कुल इसको बच्चों की तरह इसके साथ मोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता, कभी इसको खिला के, कभी इससे प्यार करके, कभी लाड करके, कभी मुस्कुरा के, जोर नहीं लगाना है। जोर लगाएंगे तो फिर मसले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी है जो 25-30 साल का एक बन चुका है। अब उस आदमी ने अपने जहन को उस तरह बदलना है कि ज़िंदगी उसके कंट्रोल में रहे, उसका बैलेंस और उसके इमोशंस भी उसके काबू में रहें, और वो रिज़ल्ट जो चाहता है अपनी ज़िंदगी से, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सके। तो अपने आप के साथ अब बिल्कुल इस तरह डील करना होगा जैसे आप किसी बच्चे के साथ डील करते हैं, और जल्दी नहीं करनी है। कोई जो बंदे मेरे से ज़िंदगी में नहीं कुछ रिजल्ट, सिर्फ उस बंदे का आया जिसको जल्दी बढ़ी है, रिश्ते बनाने की जल्दी, इंप्रेशन देने की जल्दी, कुछ चाहने की जल्दी, कुछ पाने की जल्दी, कोई जल्दी नहीं है। ये एक अपने साथ एक किया हुआ वादा है। ये जितने लोग हम प्रेयर्स करते हैं, जितने लोग हम अपने पैसे कमाते हैं, जितने लोग हम रिश्ते बनाते हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये सारे का सारा आउटकम है उसका। जब तक बेसिक ब्रेन के अंदर सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारे सारे बनाए हुए पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हमारे सारे इमोशंस और रिश्ते जो हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। मेरे सामने सब के हो रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़े किया हुआ काम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी ज़ात के ऊपर मैनिफेस्टेशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अचीवमेंट, कोई भी ऐसा लॉरल्स आप अचीव कर लें जिसका आपकी ज़ात और आपकी ऑथेंटिसिटी पर असर नहीं पड़ रहा, वो ज़ाया है। एक दिन वो आपको याद ही नहीं होता। जब आप परेशान होते हैं आपको याद ही नहीं होता मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, मैं कितना बड़ा, मेरी सोच है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने क्या किया, बिकॉज आपने उस तरह ज़िंदगी में सोच कर हमने ज़िंदगी जी ही नहीं। तो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, कि एक जगह पर रुक के पीछे आप एनालाइज करते हैं क्या क्या गड़बड़ हो गई है, अब इस गड़बड़ को कैसे कैसे इसको ठीक करना है, और आगे अवेयरनेस के साथ, मसला है अवेयर होने का। जो हमने जो भी ज़िंदगी में अब तक किया है, बचपन में, जवानी में, लोगों की देखा देखी किया, वो सारी कंडीशनिंग थी, उसमें हमने कोई कमाल किया ही नहीं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं, जो सक्सेस के स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं वो सब इसलिए बनाए हैं कि दूसरे हमको ऐसे देखना चाहते हैं, हमें भी लगता है कि शायद ये करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं ठीक होंगी। बिकॉज हर आदमी डिफरेंट है, उसके ब्रेन के केमिकल्स डिफरेंट है, उसके जीन्स डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो एक तरह की ज़िंदगी जो इन्होंने बना के हमें दे दी है कि जी इसके हिसाब से हो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को देख कर, सोच कर, समझ कर, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को सामने रख कर, फिर आप एक ज़िंदगी बनाएंगे जो आप बनाएंगे। और उस ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी और इसकी जो पूरी गेम है ये सारी आपने खुद बनाई है, फिर ना आप इसमें, आपको कोई टेंशन होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना जज्बात इस तरह आएंगे कि हम बात ही ना कर पाएँ और परेशान हो जाएँ, और गुस्से भी में हम फटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वाली ज़िंदगी की गेम आपने खुद बनाई होगी अपने आप को सामने रख के। तो उसके बाद ये सारे मसाइल जो पिछली गेम हमने 30-35-40 साल खेली है वो गेम हमारे लिए थी नहीं। तो अब आप बिल्कुल एक नई गेम बनाने लगे हैं जो आपकी ज़िंदगी की है, जो आप जिसके स्टैंडर्ड सेट करेंगे, इसमें क्या किसी को मिलना है, क्या नहीं मिलना, आपको क्या मिलना है, आपको क्या नहीं मिलना। जब ये सारे रूल्स ऑफ द गेम ही आपके होंगे तो उसमें तो आप नहीं हार सकते। समझ आइए बात। जब तक ये नहीं बनाएंगे, और हर आदमी को रब ने ये अलाउड किया हुआ है कि वो अपनी मर्जी की चॉइसेस करे, उसको फ्री विल दी हुई है, लेकिन इससे पहले उसने सोचना है, समझना है, बाकी लोगों को पीछे हटकर, प्रेशर से हटके, अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, अपने आप को फिगर आउट करके, जब आप ये वाली गेम बनाएंगे जो आपने डिज़ाइन की है, तो इस गेम में आपको हराना या मारना या परेशान करना या तकलीफ देना नामुमकिन हो जाएगा लोगों के लिए। इतनी सी काम की बात समझें आप। इस अब बताएं, ये जो मैंने बात की इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग आई है, इससे क्या होगा? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
0: इससे रिलेटेड दिमाग में अभी जो बात आ रही है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश फील हो रहा है, लाइक आई एम पुटिंग आउट माय प्रॉब्लम्स ऑन समवन एंड दे आर गिविंग मी आंसर्स। आई अंडरस्टैंड वी इससे कई लोगों का फायदा हो जाएगा बिकॉज दे आर सेइंग द सेम वे, बट मेरा जो एज वी स्पोक अबाउट मेंटल कंडीशनिंग फॉर इयर्स, वो जो हो चुकी है, asking for help is has been the biggest problem, and I've learned and observed myself that without asking I won't be able to thrive. I'll be in the same situation all over again, and I have to submit I have to submit that I cannot do it myself. It's okay asking for help. But ye jo struggle jo abhi chal raha hai, abhi pichle kai saalon se chal raha hai, to ask for help and then jo andar wala jo dusri feeling hai ki jo hame sikhaya gaya hai, ya tum mard hai, tum khud nahi kar sakta. Itni si baat nahi khud figure ki.
1: Achha, jisne humko ye baat batai thi na, तू मर्द है तू नहीं कर सकता, वो दे डाइड मिजरेबली. ठीक है, उनके दादे परदादे एवरीवन वाज मिजरेबल. पहली बात तो ये समझें, आप अपने अबाव अजदाद में से किसी की जिंदगी भी नहीं लेना चाहेंगे, वो बड़ी टफ जिंदगी थी और इस जमाने में वो वैसे ही फिट नहीं आती. ठीक है, आपने सिंपल थोड़ा सा सोचने का तरीका मैं आपको एंगल बताता हूँ, जिस एंगल के ऊपर आपने सोचना शुरू करना है फिर ये मसला ही नहीं रहेगा. पहली बात, यू आर नॉट कमिंग अप here on this platform asking for help. यही तो गड़बड़ है जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ. यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ वे. आप एक तरीके से एक चीज़ को बयान कर रहे हो जो कि 99% लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसके बारे में बात करें. पहली बात. दूसरी बात, हर बंदा, हर आपका जो मसला है ना, जो भी मसला आपका या किसी का भी है, वही मसाइल हैं, वही 10-15 मसाइल हैं पूरी इंसानियत के साथ, करोड़ों देशियों के साथ वही मसले हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता और उसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं कर रहा. जब तक आप डिस्कस नहीं, आप पॉइंट लाते हो, आपको आगे से एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, तो आप बेसिकली हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की जो वो सामने नहीं ला रहे, वो आप सामने ले आए. आप नहीं भी बताएंगे तो मैं तो फिर भी सामने ले ही आऊँगा. ठीक, लेकिन हर बात मेरे सामने लाने से और किसी और बंदे के सामने लाने से मुख्तलिफ लोगों को चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से हिट करती हैं. तो एक्चुअल में यू आर नॉट सीकिंग एनी हेल्प. आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक चीज़ के बारे में आकर फोरम पे बात करते हैं कि ऐसे फील होता है, और जो आपको होता है ना वैसे 99% लोगों को होता है, लेकिन वो इस तरह कह नहीं पाते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है. तो पहली बात है, आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में डालें बजाय हेल्प के. जब कॉन्ट्रीब्यूशन में आप कोई चीज़ डालते हैं ना, तो आपको उसके बदले कुछ मिलता है, ये तो पता है ना आपको. आप ज़कात देते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है. ठीक, आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर डालते हैं. ये तो वो वाली बात है कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, मैंने सब कुछ इस शो में बोल दिया, बता दिया आपके ख्याल से. ठीक है, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, आप बताएं मुझे क्या. आप फ़र्ज़ करें, आप आज़ाद जी हैं इस वक्त, मेरा वाला काम आप करते हैं, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो आप आके इस शो पे कर रहे हैं, मैं ये काम 18 साल से कर रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे बताएं, आप जो सुनते हैं, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ और मुझे क्या मिल रहा है ये करने से, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, जो भी क्या इमेज है आपके दिमाग में कि मुझे क्या मिला उससे.
0: सर, मुझे नहीं लगता आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह करते हैं लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यही काम तो हम सब करना चाहते हैं. और आपको जो सुकून मिलता है ना, अंदर से सुकून मिलता है, उसी के पीछे मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं भी भाग रहा हूँ. मुझे लगता है आपको अंदर ये सब करके अंदरूनी सुकून बहुत मिलता है आपको. आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आप यू डोंट थिंक दैट दिस क्या चल क्या रहा है, आप कहते हैं कि दिमाग, यू कैन फिगर थिंग्स आउट, यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग.
1: अब आपने समझ नहीं, आप जो आप देखे, मैं आपसे भी जो आपको लगता है ना कि आपको वीक थे या आपको लगता है कि आपको चीज़ हैंडल नहीं कर पाए, मैं अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों को आज तक मिला हूँ, मैं बचपन में उन तमाम लोगों से ज़्यादा वीक आदमी था, तमाम लोगों से ज़्यादा वीक था, मेंटली वीक था, फिजिकली वीक था, स्पिरिचुअली वीक था, मैं बहुत वीक आदमी था, बेइंतहा वीक.
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
7: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
9: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। Only on Inspire FM.
4: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
5: फौज में जब तक गया मैं तब भी काफ़ी वीक था। मैं जब सीनियर में जो भी मैं चीज़ें अचीव करता था उसके बावजूद मैं बहुत वीक आदमी था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैं वीक था। इन्वायरमेंटली जो चीज़ें मुझको असर कर रही थी और जिस सोसाइटी में बड़ा हो रहा था जिस घर में मैं बड़ा हो रहा था वो हर चीज़ उन पूरा माशरा एक तरफ सोच रहा था और मैं एक और तरफ सोच रहा था जिसकी वजह से मैं डर गया घबरा गया और मुझे लगता था कि मैं कैसे सही हो सकता हूँ ये सब के सब कैसे गलत हो सकते हैं। सौ सौ साल की इनकी ज़िंदगियाँ हैं बट दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। इनके फाइनेंसेस बेहतर नहीं हो रहे इनकी इमोशनल लाइफ बेहतर नहीं हो रही इनकी शादियां मतलब कुत खाने खुले हुए हैं इनके बच्चे इनके काबू में नहीं है जिंदगी गोलियां मर रहे हैं लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जहालत की ये सारी फजूल की ज़िंदगी चीज़ें जी रहे हैं। तो उसने मुझे क्या किया अपने अंदर बंद कर दिया और उस घुटन में मेरी स्टैमरिंग भी शुरू हो गई मेरी हर चीज़ मुझे बीमार रहना शुरू हो गया मैं फिज़िकली मेंटली हर चीज़ के साथ साथ तो मैं बहुत वीक हो गया। तो आपने ये बात समझनी है कि फिर मैंने जब दुनिया के साथ चलने की कोशिश क्योंकि मैं वीक था तो मैंने कहा यार ये तो खा जाएंगे हमको तो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं ये हो सकता है सही कह रहे हो। अंदर से हालांकि बड़ी आवाज़ आती थी कि नहीं ये सब गलत है ये कोई ठीक नहीं हो रहा लेकिन मैंने फिर भी 28-30 साल तक मैंने लोगों के तरीके से करने की कोशिश की जो घर में सीखा समझा था वो करने की कोशिश की जो इर्द गिर्द सोसाइटी में चल रहा था वो करने की कोशिश की मैं जिस इंस्टीट्यूशन में जिस मैंने बिजनेस में गया जॉब में गया मैं उसमें करने की मैंने कोशिश की बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज टू थिंग्स वन दे वर ऑल रॉन्ग एंड सेकेंडली आई वॉज मिजरेबल एंड आई वॉज मिजरेबल टू एन एक्सटेंट वेयर मैं इनकपैसिटेटिंग हद तक ख़राब हो गया कि मेरे से काम ही कुछ नहीं होता था ना मैं सोच पाता था ना मैं कुछ कर पाता था। अपेरेंटली हर चीज़ मेरी परफेक्ट थी लोग मुझे मेरी तरह बनना चाहते थे और मेरी मिसालें देते थे और वो बस कहते थे कि वह बंदा ऐसा होना चाहिए लेकिन खुद बंदा अंदर से वीक खोखला हो गया हॉलो। तो फिर मुझे किताब पढ़ने से एक रात को जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू तो मैंने जिस दिन कुरान पहली दफ़ा खोला और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा पढ़ने लगा तो मैंने रब की जब बातें सुनी एग्जैक्ट वो किताब में क्या कहता है और फिर मैंने दुनिया की जो 30 साल की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे लगा कि दोनों के आपके बीच में टोटली कोई भी एक कंट्रास्ट था बिल्कुल कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती थी। जो भी रब कह रहा था हमारी सारी सोसाइटी पूरा घर पूरी फैमिली सब कुछ हम उसके ख़िलाफ़ थे। तो जब मुझे समझ आई कि ये और जो ये 30 साल में जिन्होंने मुझे किया उन्होंने मुझे एक वीक ज़हनी तौर पे कमज़ोर और हर किस्म का जो कि उसके नुकसान होते थे मुझे वो आदमी बना दिया और जब मैं दूसरी साइड पे लेके चला उन चीज़ों को तो अगर मैं शुरू में तो मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं इसकी बड़ी यू नो इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है हर चीज़ की जैसे आज का क्लिप भी था एनलाइटनमेंट की या इल्म की कीमत अदा करनी पड़ती है लेकिन मैं वो कीमत 100 दफ़ा देने को तैयार हूँ। मुझे एक और ज़िंदगी भी मिलती है तो मैं डायरेक्ट उसी ज़िंदगी में वही करने की कोशिश करूँगा जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात ये बात कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है आप समझें मेरे मुझे जिस पठान कल्चर में कंडीशन किया गया है ना मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मेरी फैमिली मेरे दोस्त ये लोग और मुझे इंसानों की बहुत ज़्यादा परवाह है, एक हद से ज़्यादा परवाह है, जो कि उनको ख़ुद भी नहीं है ज़ालिमों को, तो मुझे उनसे भी ज़्यादा उनकी परवाह है। लेकिन ये 25-30-32 साल उनकी परवाह करके मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे समझ आया कि अगर मुझे इनकी एक्चुअल में परवाह है तो मैं उनको वो बताऊं, मैं अगर पैसे कमाता हूं तो मैं उनको वो तरीका बताता हूं जिससे वो पैसे कमाएं, मैंने हेल्थ कमाई तो मैंने उनको वो बताया कि वो भी हेल्थ कमाएं, मैंने अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में जो कमाल देखे और इतनी मुझे मोहब्बतें इससे मिली, फिर मैंने उनको वो बताया कि जो उनको भी मिलें। तो मुझे लोगों की बेइंतहा परवाह है, इतनी ज़्यादा कि मुझे, मैं शायद, मैं अगर अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ ना, मैंने आज तक कभी बारगेनिंग नहीं की, लेकिन मैं जब किसी के साथ जाता हूँ मैं उसको बेस्ट डील दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी मेरे इर्द गिर्द कोई लोग होते हैं ना, वो खुश रहें, वो सुकून में रहें, उनको जो चाहिए वो मिल जाए, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो और मैंने ज़िंदगी में जो किया, मैं आर्मी में गया किसी की वजह से गया, मैंने फिल्म की मैंने किसी की वजह से की, मैंने आर्मी छोड़ी किसी की वजह से छोड़ी, मैंने ट्रैवल किया जहाँ जहाँ मैं ज़िंदगी में काम करता हूँ, मैंने सब किसी के लिए किया। मैं अभी फिल्म जो करता हूँ वो भी मैंने किसी के लिए, मैं खुद के लिए मुझसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं खुद के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं सुकून करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब ज़िंदगी में दूसरों के लिए करने का मतलब ये है कि मेरे लिए लोग बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या मैं उनकी परवाह करूं? मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उनको क्या गलत और सही लग रहा है, मैं इस बात की परवाह करने लगा हूं कि क्या सही है और उनके लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है और हम दोनों के रिश्ते के लिए क्या सही है। जब ये पता लग जाता है तो फिर लोगों की रोंती बूथियाँ, और उनको नहीं पता, एक आदमी गलत चीज़ खाना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, उस रास्ते में वो मारा जाएगा, ज़हनी तौर पे बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसके वो चीज़ करने के बजाय उससे वो काम करता कराता और उसको सीधा रखता हूँ कि वो कर ले जिसमें उसकी भलाई है, और अगर वो एक हद तक नहीं रुकता तो फिर वो अपना कर ले जो उसने करना है, और फिर उसकी जो भी कीमत और सज़ा है वो उसको उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो जब आप ये जान जाएंगे, तो ये जिस तरह मैंने पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझाया, इस एंगल से आपने सोचने की कोशिश की
6: सर? मेरा कहने का मकसद मतलब यही था, जब मैंने कहा कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, परवाह मुझे भी फैमिली की ऐसे ही है जैसे आपको है, परवाह मुझे भी जो मेरे आसपास ऐसे ही है, बट कितना बंदा समझाए जो आपने कहा सही और गलत। अभी अभी मैंने यही करना शुरू किया है कि मैं जानता हूं ये सही है, मैं इसको कर दूंगा, और इसके बाद इन्होंने लेना है तो ये ले लेंगे, अगर नहीं लेना है तो ये नहीं लेंगे,
5: बस हक है उनका ही।
6: हाँ जी,
5: और क्योंकि अभी आपने इनसे बाहर, उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ना वो ओवर रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करते हैं और इसमें मारे जाते हैं और अपने लिए दुख और तकलीफ बना लेते हैं। किसी भी आदमी को जो जिम्मेदार है, जो बेहतरी करना और जानना चाहता है, मैं सख्त खिलाफ हूँ उस आदमी को टॉर्चर करने की। कोई भी करता है मैं उसको कभी नहीं माफ़ करता। कि एक आदमी आपके लिए अच्छा सोचता है, आप उसको तकलीफ देते हैं, एक आदमी आपको थोड़ा सा देता है और आप उससे और मांगने की कोशिश करते हैं, एक आदमी आपके साथ नाइस होता है, काइंड होता है, आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, आप उससे उसके साथ चिपक जाते हैं लीच की तरह। मुझे ऐसे किसी बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो जहाँ फंसेगा, जहाँ उसको मसला तकलीफ होगी, वो मुझसे या किसी को मैं जानता हूँ तो उसको मैं रेफ़र करूँगा, उसको ठीक करेंगे, और उसके बाद वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। If they are not contributing to what I am trying to do for them and for myself and for others, I don't need them, or I limit my interaction with them. And you know, और जो भी reciprocal जो चीज़ें मुझे उनसे करनी है, मैं उसके हिसाब से नहीं करूँगा। जिसका जितना contribution है, चाहे वो मेरा blood relation है, चाहे वो मेरे friends हैं, चाहे मेरे partners हैं, चाहे कोई भी बंदा है, अगर वो मेरे constitution के ही खिलाफ है तो मैं उसके साथ नहीं चल सकूंगा लंबा। थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं चल सकता, इतनी सी बात है। चाहे वो जो मर्ज़ी डीलें लेके आ जाएं, कुछ भी वो कहें, चाहे सोसाइटी कुछ कहती है, चाहे लॉ कुछ कहता है, जो भी होता है लॉ पे, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लॉ वगैरह का जब कुछ मुझे कहते हैं कि जी हम लॉ के थ्रू ये करेंगे, मैं कहूँगा सारा कुछ, सारा आप ही ले लो, ले जाओ सारा कुछ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लॉ से खेलता रहूँ मैं। समझ, आप लॉ के पास किस लिए जाते हैं? कि जो आपको इंसाफ से फैसला करें ना, कि आधा आधा कर देंगे या 20-25 कर देंगे या ये बात ऐसे हुई थी। मैं कहता हूँ नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, ये पकड़ो और निकलो सारे का सारा लेके। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मुझको क्वालिटी की ज़िंदगी जी कर कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना है और कोई चीज़ क्रिएट करनी है। अगर मेरे रिश्ते कमाल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे रिश्ते और मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी रब ने मुझे दी है, उस मेहरबानी मेरे पे इतनी की है कि मैं इसको कमाल का एक नमूना बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊँ? तो अगर आप इनसिक्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस और दुनिया के डर से वो मेरे साथ एक चीज़ रखना चाहते हैं, मुझे वो खेल नहीं खेलना, क्योंकि बहुत खेल लिया और बहुत लोगों ने खेल लिया ये खेल, ये रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा हम एक्सरसाइज कर लें, इससे अच्छा मूवी देख लूँ मैं, उससे अच्छा मैं लोगों से प्यार मोहब्बत की बात करके या यू नो शो कर लूँ मैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके कि जो भी वो कहते हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो कि आपके लिए इख्तियार में आपके नहीं है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं लोग, उनकी फ्री विल। आपको कंफर्टेबल होना है इसके साथ कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने किया, आई हैव टू लेट गो एंड देन डोंट। अब थोड़े से अपने आप को स्पेस दें, और क्योंकि आप अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो वो बार बार ट्रिगर करेगा आपको, तो लेट देम बी, लेट देम लर्न देयर ओन लेसन, और उसके बाद अगर आपके पास आते हैं और ठीक होने की कोशिश करते हैं तो आप वहीं से शुरू कर लें।
6: जी सर, इसी बातों से ना एक मेरे दिमाग में अभी जो चल रहा था, जो वेयर आई हैव प्रॉब्लम लेटिंग इट गो, और उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। एक सिंपल चीज थी, जैसे जो मेरी इंडस्ट्री है, द वे आई वर्क, वी हेल्प पीपल, यू नो, रोड्स आर असिस्टेंस, और साल में हम एक बार सारे ट्रक्स की चेकिंग करते हैं। सो we needed a driver, like, you know, to go in there, then we put the truck on the hoist so it goes up. So usne mujhse pucha, can I go? I said, no, we need you here because this is what we need to do. He's like, wo banda thoda jis type ki mentality se mujhe problem hai, isliye main bata raha hu, jo mujhe hit karti hai. Uska bhai aap nahi ja sakte, aapko kya visa lagta hai? And

0: finish what I have to say, it bothers me for days.
1: अच्छा हीरा सिंह मुझे एक बात बताएं, दो चीजें इसमें शुरू आ रही है, ठीक है, दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं. पहली बात, मुझे सच सच एक क्लियर बात बताएं, फर्ज कर आपके पास पेट्स हैं?
0: नहीं सर.
1: कभी पेट रखा है?
0: छोटे होते घर में था, अभी या नहीं.
1: अच्छा, अभी मेरी गौर से बात सुनिएगा और उसको प्रैक्टिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही सोचें आप, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचें. फर्ज करें आपके आपने बिल्ली रखी होती, उसको आप खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके साथ आप लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बिल्ली कोई ऐसी हरकत करती जो आपको बहुत बुरी लगती, ठीक? अब आप दूसरी तरफ इंसान के साथ आ जाएं, आप उसको ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं उसको, ना जितने तरीके से जो आप समझे उसके हिसाब से उसके साथ डील करते हैं, फिर वो इंसान आपको कुछ ऐसी बात कह देता है कि जो आपको लग जाती है, चुभ जाती है, या कोई ऐसी हरकत कर देता है जो आपको बहुत बुरी लगी है, आप क्या बिल्ली के साथ भी वही रिएक्शन देंगे जो आप किसी बंदे के साथ दे रहे हैं?
0: ऑब्वियसली नॉट सर.
1: तो इसमें आपने, मैं पहले दिन से जब से आप शो सुन रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम में से बहुत सारे इंसान क्या हैं, हैवानी हालत
0: हैवानी हालत में
1: तो जब एक आदमी हैवानी हालत में होता है, बिल्ली आपको कैसे देख रही है या कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या आपको रिएक्शन देना चाहिए उसका? नहीं,
0: बिल्कुल नहीं.
1: तो ये जो इंसान भी इस तरह के होते हैं जो कि एब्रप्टली कुछ भी कह देते हैं या दे हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग और उसको गलत भी होते हैं तो नहीं मानते, आपने ये उनके साथ सिंपथी होती है कि ये भी हैवानी हालत. एक बात, दूसरी बात है, पठानों में और सिखों में, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि जिस तरह कल्चर होता है, जिस तरह हमें बड़ा किया जाता है और जिस तरह का रख रखाव और फैमिली और चीज़ें होती हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट का इशू होता है हमारे साथ. तो किसी इस किस्म का कोई भी जुमला कोई बोले कि भाई तुम्हें इसका वीज़ा लगता है, तो ये उसने सिर्फ अपने तरीके से एक जवाब दिया है. लोगों को बातें बड़ी करनी आती हैं तो उसको, वह एक बंदा है जो बातूनी है, उसने एक बात दी की है. लेकिन हम और आप स्पेशली, ये दो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये इनकी ट्रेनिंग का, इसका खून की वजह से नहीं कह रहा मैं, ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि हमारे लिए ये बदतमीज़ी है कि नहीं?
0: बिल्कुल.
1: बदतमीज़ी जब आप, जैसे ही उसको आप बदतमीज़ी के कंपार्टमेंट में डालते हैं तो सरदार जी का जो दिमाग है ना वो बदतमीज़ी का रिएक्शन देता है, क्लियर? तो उस कंपार्टमेंट में डालने के बजाय इसको जहालत के कंपार्टमेंट में डालना है, इसको जानवर वाले कंपार्टमेंट में डालना है कि ही डज नॉट, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था फॉरगिव देम दो दे नो नॉट, इनको माफ़ करें क्योंकि ये नहीं जानते. तो वो लोग जो नहीं जानते, जो कि आपके समझाने बताने की, आई बिकम मोर नाइसर टू दीज पीपल जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ या मैं, और जो बहुत करीब है उनके लिए मैं सख्त हो जाता हूँ इन बातों पर, अगर वो ऐसी कोई बोंगियाँ मारें आगे से फजूल बात कोई करें उसमें मैं सख्ती करता हूँ क्योंकि वो बहुत करीबी लोग हैं और वो पूरा सिस्टम संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं या रिश्ते संभालते हैं, उनको आप, यू कॉन्ट अफोर्ड डम पीपल अराउंड यू. लेकिन जो बाकी लोग हैं जो सेकंड थर्ड टीयर पे होते हैं, ऐसे किसी भी बंदे की बात को सीरियस नहीं लेना, बल्कि और नाइस होकर आपने सिर्फ उनको एक लुक करानी है और उनको थोड़ा सा फर्म होकर वो बात दोबारा एक्सप्लेन करनी है, और उसमें कभी आप हल्का सा लाइट जेंटल तरीका भी डाल सकते हैं और कभी फर्म तरीका भी डाल सकते हैं. तो इसको इस तरीके से लेंगे तो ये जो ओवर सेंसिटिविटीज़ होती है ना, कई चीज़ें उस तरह कही नहीं जाती. जब फौज में हम होते थे कोई ऑफिसर को उल्टी सीधी बात कर देता था सीनियर को बहुत बुरी लग जाती थी, तो फिर जो दरमियान में सीनियर होता था ना वो जाके उस सीनियर से कहता था सर माफ़ कर दें, अच्छा अफसर है, बस अंग्रेज़ी की गलती हो जाती है उस, यानी इंग्लिश में उसने जिस तरह कहा है इट जस्ट केम आउट यू नो इन अ बैड वे में निकल आई ये बात, वरना ही डिडंट मीन दैट. सो इंग्लिश की गलती में हम उसको कहते सर अंग्रेज़ी की गलती होगी, बेवकूफ़ को नहीं पता था, छोड़ दे माफ़ कर दे. तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी बीच में उनको थोड़ा सा लोगों को लेवरेज देना है और उस तरह उनको लीवे देंगे तो ज़िंदगी आसान होगी. वरना अब आपने कहा ना कि मैं इस चीज़ से, मैं, मेरा दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही है, ये ज़िंदगी की इतनी ज़बरदस्त जो ज़िंदगी मिली हुई है, जो फैमिली मिली हुई है, जो सोचें मिली हुई हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उधर जो आपके यू नो माहौल मिला हुआ है, इस जिसके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोग तरस जाते हैं, फैमिली के लिए लोग तरस जाते हैं, इज्जत प्यार मोहब्बत के लिए लोग तरस जाते हैं, आपको वो सब मिला हुआ है, उसके सदके इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना है आपने. और ये कोई भी चीज़ें नहीं, आपको इसको बहुत लाइट लेना होगा, वरना आपकी पार्टी जो चल रही है ज़िंदगी में और बहुत बेहतर आगे आप कर सकते हैं उसके ऊपर असर आएगा, क्लियर?
0: सर यही मेरा, मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, ये मैं कौन सी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई वाज बिफोर. और अभी अभी जैसे जैसे ये सब आपके आपके शो के थ्रू और कुछ अदर थिंग्स आई हैव कम अक्रॉस, आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन माइसेल्फ मोर दैट दीज आर द थिंग्स, दे आर जस्ट होल्डिंग मी, दे आर दिस एंकर्स, आई एम ट्राइंग टू लेट देम गो. एंड एज यू सेड बिफोर, लाइक यू नो, आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज दिस इज व्हाट the problem I'm facing.
1: मुझे ये बताएं, हाँ, इस सारी बात में पहले तो एनलाइटनमेंट में एक बात, आप एनलाइटेंड हों पहले,

मुनवीरों मिनहो, उन्हीं के अंदर में से कोई खबरदार करने वाला, ये तो अजीब बात है। हादा शही उन अजीब, समझ में आई बात? तो उनको क्या चीज अजीब लगी कि उन्हीं के अंदर से कोई खबरदार करने वाला आ रहा हो। यह बात हो रही है सूरत काफ में। अच्छा, अजाल अलिहा इलाहन वाहिदा, एक्चुअली इसके से पहले भी है, बल अजीबू अनजा मुनज़िरुन मिनहुम फ़क़ाला क़ालू हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजाल अलिहा इलाहन वाहिदा। ठहर जाए एक सेकेंड, इलाहन वाहिदा ओके। अब बात सुनिए, आयत स्क्रीन पर नहीं है, आप सुनना। वह अजीबू, उनको अजीब लगा, जैसे पहली आयत में अनजा मुनज़िरु मिनहुम, के उनके अंदर में से कोई खबरदार करने वाला आ गया। वही बात जो पहले हो रही थी, वही बात सूरत साद में हो रही है। अच्छा, वकाल अल काफिरून हाज़ा साहिर कज़्ज़ाब, काफिर कहते हैं कि ये जादूगर हैं, बार बार आदत से झूठ बोलने वाले हैं। कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब जो बार बार झूठ बोले। कसास, जो बार बार गोश्त काटे। खब्बाज, जो बार बार रोटी बनाए। खयात, जो बार बार धागा लगाए। खयात, कज़्ज़ाब जो बार बार झूठ बोले। गफ्फार, जो बार बार माफ करे। वहाब, जो बार बार तोहफे दे। ठीक है, तो यहां कहा कज़्ज़ाब, जो बार बार झूठ बोले। कज़्ज़ाब, अजाल अलिहता इलाहन वाहिदा, उसने सारे इलाह लेकर उनको एक इलाह बना दिया। फिर कहा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अब अजीब नहीं कहा, क्या कहा? उजाब। अच्छा, पिछली दफा कहा था हाज़ा शैउन अजीब। दूसरी आयत के बारे में कुछ बातें समझ ले, फिर हम इनको कंपेयर करते हैं। बड़े मजे की बात है ये। उनकी क्या, उनके क्या इत्तेहामात थे, क्या इल्ज़ाम थे रसूल के खिलाफ? एक तो था कि हम में से आए, वो तो काफ में भी है। उसके अलावा कहा कि ये जादूगर हैं। अच्छा, जादू सुना जाता है या देखा जाता है? देखा जाता है ना, लाठी सांप बच जाए, चलो कोई कहेगा ये जादू है, ठीक है, समझ में आती है बात। हाथ में से कबूतर निकल आया, जादू है। कोई बात कर रहा हो और फिर कोई उससे कहे कि ये क्या है, जादू है, सेंस नहीं बनती। क्योंकि जादू तो देखने की चीज होती है, सुनने की चीज थोड़ी होती है। ये पता है क्या है, कुरान ऐसा कलाम था कि जब उसको वो सुनते थे तो वो ऐसे हक्का बक्का हो जाते थे। और क्योंकि वो शेर के माहिर थे, मैंने कहा था ना पहले कितने कीड़े निकालते थे हर एक के अल्फाज में से, एक तनकीद नहीं कर सकते थे। तो उनके पास एक ही चारा था, या तो इसको खुदा का काम कलाम मान लें, या किसी गैबी ताकत का कलाम मान लें जिसके पास जादू वाली पावर्स हैं। यानी गैब का एतराफ तो करना ही पड़ा। साहिर कहने में, जादूगर कहने में भी ईमान लगता है, क्योंकि कोई कहे कि ये जादू है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये आप लॉजिकली इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी शिकस्त तो आपको माननी पड़ी। फिर एक और, अच्छा साहिर तो कह दिया, उसके अलावा एक और इल्ज़ाम भी क्या लगाया था, उसमें भी अजीब बात है। क्योंकि अगर आप किसी को झूठा कहो, अगर आपके पास कोई आके कहे कि आपसे पैसे मांगने की कोशिश करे कि मेरी जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने कहा यार मैंने तुझे उस ऑफिस से निकलते देखा है, मैंने लंच किया था अपने कॉलेज के साथ, मेरे साथ बैठा हुआ था, तेरी जॉब है, वो आपसे अच्छा मैं चलता हूँ, वो भाग जाएगा, अगले दिन आपके पास वापस आएगा, किसी और के पास जाएगा। अगर आपसे झूठ बोला है तो आपके साथ तो नाकाम हो गया, आपके पास वापस क्यों आएगा, किसी और को जाके धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कैसा झूठा है, इसको हमने झूठा कहा कल, फिर आके वही झूठ बोल रहे, फिर हमने धक्के देके निकाला, फिर आके वही बात कर रहे, ये काज़िब थोड़ी है, ये क्या है, कज़्ज़ाब। लेकिन हमने कभी कज़्ज़ाब ऐसा देखा नहीं, कज़्ज़ाब अगर कोई हो भी तो कहीं और जाके झूठ बोलेगा ना। एक तो है कि ये जादू है इसमें, दूसरी बात ये समझ नहीं आती कि ये बार बार आकर यही बात करते, और ये तो हमने कभी किसी झूठे में देखा नहीं। तो अब अगर आप कंपेयर करें दोनों को, एक आयत में सूरत काफ में एक चीज थी जो उन्हें अजीब लगी, वो क्या थी, कि उनके अंदर में से ही कोई खबरदार करने आ गया। ठीक है,

0: everything that they have learned in all those 60, 70 years.
1: इसमें तो कोई शक नहीं. और मुझे सबसे बड़ी सहूलत ये रखती है कि जब आपके साथ नानियाँ दादियाँ रहती हैं तो यू हैव लाइक अ फ्री टाइम. मैंने कहीं जाना है तो बच्चे किए दादी के हवाले किए या नानी के हवाले किए एंड आई एम ऑफ टू हैव माई मी टाइम. लेकिन जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें सिर्फ दो बंदे हैं तो दैट्स वेरी हार्ड टू गेट द टाइम लाइक मी टाइम.
0: स्पेशली व्हेन बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग दे इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू यू नो गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर देयर ओन टाइम व्हेन दे आर वर्किंग फुल टाइम एंड सपोर्टिंग देयर फैमिली.
1: इसमें तो कोई शक नहीं. अब देखिए ना, अब हम अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करती हैं तो जिस तरह आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, आपके हस्बैंड भी फुल टाइम जॉब करते हैं, आपके दो बच्चे भी हैं, तो आपके लिए एज अ फैमिली इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है?
0: जैसे मैंने कहा कि आई ऑलवेज वांटेड के कोई भी मेरे साथ मेरे कोई इन लॉज में से या मेरे पेरेंट्स में से कोई एक जो है एल्डरली फिगर होता ताकि मेरे बच्चों को एक सपोर्ट मिलती, उनको एक लव और केयर का एलिमेंट मिलता और मुझे भी थोड़ा सा एक नॉट काइंड ऑफ एस्केप बट एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है. हाँ. कि इन द बैक ऑफ द माई माइंड आई वुड हैव के ओके आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम माई वर्क इन रीचिंग होम एंड थिंग्स लाइक दैट. तो देयर इज समवन ऑलरेडी इन माई हाउस टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन. दे कीप एन आई ऑन माई चिल्ड्रन, दे कैन ऑफर देम फूड व्हेन दे नीड इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
1: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि थोड़ा आपको एक मेंटली रिलैक्स होते हैं. अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी दो फैमिलीज, एक हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली, नॉर्मल फैमिली जो कि हमारी एक है, और दूसरी फैमिली हो गई हमारी एक्सटेंडेड फैमिली.
0: आपके इसी डिस्कशन को थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाऊँगी बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड टाइप कि फैमिली में जो आपका सपोर्ट का एलिमेंट होता है then it all goes back to how understanding you are of the needs and wants of your family members. aapko aap agar if you want to offer your full support to aapko bhi support mili bhi hoti hai, isiliye aap kisi ko support de rahe hote hain ya vice versa. sometimes aisa bhi humne dekha hai ki aap को किसी ज़माने में सपोर्ट नहीं मिली होती फैमिली से तो यू आर नॉट वेरी गुड एट ऑफरिंग सपोर्ट. तो हमने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हुए दे जस्ट स्पेंड देयर होल लाइफ इन वर्किंग टूवर्ड्स द फैमिली बेटरमेंट बट दे डिडेंट गेट एनी
1: टाइम ऑफ
0: रिवॉर्ड और यू नो अप्रेजल और एनकरेजमेंट और थिंग्स लाइक दैट इन द एंड.
1: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, इन सब चीज़ों को भी हम काउंट करते हैं जब आप फैमिली में रहते हैं या आप अकेले रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. लेकिन वही बात आ जाती है कि कहीं आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, कहीं आपको ड्रामा ज़्यादा मिलता है. तो अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें और न्यूक्लियर फैमिली में भी आप लोगों को बहुत कुछ जो है तो वो एडजस्ट करना पड़ता है. तो लिसनर्स, अब ऐसा है कि वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह.
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya, there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے Inspire FM 105.1
9: every Friday at 11 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: Welcome back after the break to Inspire FM 105.1. As you know that we are on our first episode of Family Matters, all the matters related to family, and family itself matters to you, all the emotions, all the aspirations, all the love, mercy that you have with your family members, it matters a lot. And how you carry with all those emotions with your family. And we talked about, Afshan and I talked about two types of families so far. That is the nuclear family system and the extended family. Yes, Afshan.
11: And now we are going for the third type of family. Ek teesri bhi hoti hai na. Balki teesri kya? Teesri chauthi bhi ho sakti hai. Chauthi bhi hoti hai. Toh hum teesri family ko kya kehte hain?
0: Ji, basically family toh jaise humne pehle discuss kiya. It's where you feel comfortable, where you feel yourself. Okay, so that is those people are your family. Lekin when we are talking about the types, so a single parent family bhi hoti hai, mm-hmm. and in my opinion, they are the real heroes.
11: Heroes,
0: yeah,
11: because exactly. They have the responsibilities of both the parents.
0: Exactly, uh-huh. They are. Doing the role of a mother and a father at the same time to their children.
11: हाँ ये तो है, लेकिन होता क्या है कि सब कोशिश करते हैं एक family बनाने की, एक घर बनाने की. Parents बड़े शौक से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उनके साथ एक एक एक complete house का, एक complete family का उनका जो एक होता है, ख्याल होता है, वो उसको लेके چلتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایسے انفارسین سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں کہ وہ فیملیاں نیوکلیئر فیملی سے سنگل پیرنٹ فیملی بن جاتی ہے. تو یہ کوئی یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے فیملیز کے لیے.
12: اٹ آبویسلی اٹ ٹیکس کریج ٹو ریز اے فیملی الون, اے چائلڈ الون اینڈ اسٹل اسمائل,
11: اس میں تو کوئی شک نہیں.
12: ایگزیکٹلی,
11: بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے.
12: بالکل. اور ایسا انفارچونیٹلی سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ کوئی بھی اسپاؤس دے آر ناٹ دیئر اینی مور فار دا چائلڈ, تو دا مدر اور دا فادر ہیز ٹو ریز دیئر چائلڈ اور دا چلڈرن آل بائی دیم سیلوز. تو اس میں ہم نے یہ تو بات کر دی کہ دے آر دا ریئل ہیروز.
11: بالکل.
12: تو اس میں ہمیں ایک جنرلی اوور ویو سے نظر آتا ہے کہ دیر آر سو مینی چیلنجز اٹیچ ٹو اٹ.
11: ہاں, اس میں تو ہے. دیکھیے, بچے کو زندگی کے ہر معاملے میں, ہر اسپیکٹ میں, ہر پارٹ آف لائف اس کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کہیں جیسے ایک قدر مدر اپنے بچوں کو اکیلے ریز کر رہی ہے ایز اے سنگل مدر, سنگل پیرنٹ, تو بہت سارے جگہ ایسی آتی ہے جہاں بچوں کو ایک باپ کا, ایک فادر فگر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ایک فادر اپنے بچوں کو ریز کر رہا ہے, بالکل اکیلا ہے, وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے, تو اس کو بھی بہت جگہوں پہ فیل ہوتا ہے کہ یار اگر ان کی ماں ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا.
12: پیرنٹس ٹرانسفر دیئر کوالٹیز انٹو دیئر چلڈرن, آل دا مدرلی کوالٹیز, آل دا ایموشنل کوالٹیز, یو نو, ٹیکنگ کیئر آف دا ہاؤس, ٹیکنگ کیئر آف دا فیملی, لو, taking care of all the relationships that comes from the mother, usually I'm talking generally, and all the emotional dealing, your initiative, your decision making, it is coming from your father generally, and a good combination of both of your parents is also giving you all the you are inheriting all those good qualities from both of your parents as well. But with the mutual effort of both the parents, you become a very, you know, strong person,
11: a successful person. Yeah. As well. Lekin aapko ek bade mazey ki baat batau Hajra, maine us din ek report padhi hai jisme kehte hain ki zehanat zyada tar maa ki taraf se aati hai, to iska matlab hai agar bacche zehin hai to maa bhi zehin hai.
12: بالکل. ایسا سروے ایک میں نے بھی پڑھا ہے, ایسی ایک رپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب دونوں پیرنٹس مل کر بچے کو ایک اچھا انسان ریز کرتے ہیں تو اس میں ویسے ہی اس کی کوگنیٹو ایبلٹی گوز ٹو اے ہائر لیول.
11: ایگزیکٹلی,
12: اینڈ دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ بیٹر.
11: بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, یہ تو ایک آرٹیکل کی بات ہو گئی نا کہ ماں ذہین ہے تو بچہ ذہین ہے, لیکن اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں دونوں کا کردار شامل ہوتا ہے, پیرنٹس کا, بوتھ پیرنٹس, فادر اور مدر. دوسرا بالکل, اگر وہ ماں سے ذہانت لیتے ہیں, سگڑاپا لیتے ہیں, تو باپ سے کریج لیتے ہیں, دنیا کو اینالائز کرنے کا ایک وہ لیتے ہیں, پرسپیکٹو لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سنگل پیرنٹ کی, تو اس میں پھر ان کے لیے یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم ساری فیملیز کو دیکھ لیں, نیوکلیئر فیملی کو دیکھ لیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی کو دیکھ لیں, تو سب سے مشکل جو ہے, جو بہت اسٹرگلنگ, بہت چیلنجنگ فیملی ہے, وہ ہے سنگل پیرنٹ فیملی.
12: اس میں ناٹ اونلی دیٹ دا پیرنٹ, the single parent is striving their best to earn the livelihood, being a father figure and a mother figure at the same time, and being a friend of their children and understanding their all their needs, and their judging their strengths and areas to improve. Isme humne dekha hai ki the children are also coming across certain difficulties when they are going out and socializing with their peers, when they are attending the school, when they are attending their clubs or any other social event in the public places.
11: isme koi shak nahi, isme koi shak nahi ki aise bachon ko bahut zyada struggle karni padti hai, wo bahut kuch lack karte hain, wo lekin ha I salute to the parents who have raised. Main jaanti hoon kuch aise single mothers ko ki they have their children very beautifully, mashallah.
0: Exactly.
11: Being a single parent or struggling with lots of difficulties, and they still they manage to raise some very good
12: children.
11: Very talented, very brave children. So yes, it's hard. But alhamdulillah, we have seen such stories ke jahan pe single parent hone ke bawajood unhone ek nuclear family se ya extended family se achha bachchon ko raise bhi kiya hai aur unko padhaya bhi hai, unko padhaya bhi hai.
12: Achha, aapne baat ki ki their children lack some ability or something. In my opinion, they don't lack it. Aap utna absorb karte hain. The children are like a sponge. So they absorb everything that is in their surrounding. तो आपको जितना एक्सपोजर मिलेगा, आपको आपको जो जितने इमोशंस का एक्सपोजर मिलेगा, जितनी अपॉर्चुनिटीज का एक्सपोजर मिलेगा, यू आर गोइंग टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग दैट यू आर एक्सपोज्ड टू.
11: डेवलप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. मैंने कहा ना कि ये तो सारी वो सारा जो स्ट्रेंथ है या सारी जो एक कहते हैं स्ट्रगल है या एफर्ट है वो पेरेंट्स के ऊपर होती है कि जितना स्ट्रांग पेरेंट होगा. It's hard, it's very hard to become that strong. Lekin baz aukaat baz parents, even single parents, apne bachchon ke liye wo kuch kar lete hain. Us nahaj pe chale jaate hain jahan pe wo apne bachchon ko bahut achhi tarike se bada kar lete hain.
12: Lekin Afshar, don't you think again it is circumstantial or conditional? Jahan par if that single parent is coming from, again if they are coming from a single parent family,
11: yes,
12: so it doesn't it multiply in the child ke they are already struggling with their phase of being raised as a single?
11: Yes, wo ye to hai. A child from a broken family has more trauma, has more struggles to raise their own children to a perfect person. Theek hai, lekin it depends. The trauma has broken the person or made it strong. Agar to wo ek aisi personality hai, even if it's a single parent, agar wo ek aisi personality hai jisne ek wo jo ek broken family se aayi hai ya lekin usne apne aap ko itna mazboot kar liya hai ki jo cheeze usne lack ki hain ya jo cheeze uske paas nahi thi ya jin cheezon ke liye uske parents ne struggle kiya ya uski mother ne ya uske father ne usko bada karne mein, wo chahe ki mere matlab ye sara kuch apne bachchon mein transfer na karun, then that parent is a very strong parent. But if the parent is also carrying the trauma,
12: the emotional burden,
11: the emotional sabotage hai, jo bhi aap keh lo, agar wo usko leke bada hua hai aur abhi tak usme wo cheez hai, to uske bacche phir zyada struggling phase mein aa jate hain, kyunki parents ya mother ya father apna trauma bhi unme transfer kar rahe hote hain.
12: To that takes us to, that leads us to another type of family, that is योर चोजन फैमिली. के जब हमारी चोजन फैमिली हमें एक बड़ी अच्छी सपोर्ट दे रही है, एक बड़ा अच्छा हमारे लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए उसने बना दिया है, तो हमारी फैमिली की तरफ से अगर कोई चीज़ लैक कर रही है तो वी आर गोइंग टू फुलफिल दैट और वी आर गोइंग टू मेक अप दैट डेफिशिएंसी फ्रॉम आवर चोजन फैमिली.
11: बिल्कुल, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास आपने जो फैमिली चूज की है या आपकी जो चोजन फैमिली है, जो अब चोजन फैमिली में आप खुद भी चूज करते हो और आपके कोइंसिडेंस भी बनती है.
12: Exactly.
11: जैसे फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आप होता क्या है कि आप किसी से मिलते हैं, यू क्लिक एंड देन यू बिकम अ फ्रेंड एंड दैट फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू द फैमिली.
12: एग्जैक्टली, लिसनर्स, हम आपको बताते चले कि वी
11: हम लोग भी एक्सीडेंटल मिले हैं.
12: एग्जैक्टली, वी मेट अप एक्सीडेंटली
11: एंड देन वी हैव फॉर्मड अ वेरी गुड
12: एट सम मीटअप एंड देन वी जस्ट
11: became
12: each other and we have become a very good group of friends who are working towards the progress of women in Luton, especially all across England, I would say, but especially in Luton.
11: Bilkul sahi, hum char friends hain jo ke mile, phir friendship shuru hui aur ab hum kehte hain ki ye hamari chosen families hain, kyunki hamara ek dusre ke liye support, ek dusre ke liye emotional support, physical support. Ha, hum khane bade acche ek dusre ko bhejte hain jisse hamara bond aur bhi acha hota hai. Because luckily I have so good friends that they are the expert cooks. So if I am hungry and I don't want to cook, I can just give it a call and have a food. So ye to ho gayi meri chosen family, meri friends family.
12: So food is food is the support that you are getting from your friends, right?
11: So much of it. But no matter what, I've got some lovely, beautiful ladies as a friend, and I really appreciate my luck for having them.
12: Exactly.
11: ठीक है, तो इसके साथ बिल्कुल फिर आपके साथ, जैसे अब I'm stay at home mom, but she is a working lady and she has like colleagues, तो जिनके साथ आप काम करते हो वो भी आपकी एक फैमिली बन जाती है.
12: बिल्कुल, और उस फैमिली का अगर आप, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 इन एनवायरमेंट, तो उस फैमिली का अच्छा सपोर्टिव होना, अंडरस्टैंडिंग होना, अकोमोडेटिंग होना, इट्स अटरली इम्पॉर्टेंट. अगर आपके कोलीग्स ऑन योर वर्क स्पेस दे आर अंडरस्टैंडिंग यू एंड दे आर देयर टू शेयर योर बर्डन, और दे आर फुली अंडरस्टैंडिंग योर हार्डशिप्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो आपके लिए एक किसी भी जगह पे काम करना बहुत आसान हो जाता है. और लकीली थ्रू आउट माई करियर आई हैव फाउंड सम वेरी लवली पीपल ऑन माई वर्क प्लेस जिनको मैं आज तक नहीं भुला सकी.
11: ओह दैट्स सो लवली. यही चीज होती है, ये आपके, यही वो फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी चोजन फैमिली बन जाते हैं, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. तो अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन, बिकॉज दीज फ्रेंड्स आर देयर फॉर यू इन योर हार्ड टाइम्स, in your good times, in your bad times,
12: and without judging you, without
11: judging you, yes,
12: yeah, exactly, without passing an opinion on you, without commenting on your state, on your condition, they are there for you in your hard time.
11: Isme koi shak nahi hai.
12: What do you think about neighbors as a chosen family?
11: Neighbors ka to bahut aage, dekhiye agar hum neighbors ki baat karte hain to even ke hamare religion mein hai padosiyon ka bahut haq hai. Wo kis liye? Wo sirf isliye ke these are the first responders. खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई अच्छा बुरा होता है तो योर नेबर्स आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, दे आर क्लोज टू यू, दे कम अर्ली देन योर फैमिली. ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों को देख लें हमेशा. आप अल्लाह ना करे कभी कोई अच्छा बुरा, तकलीफ, दुख, खुशी कुछ भी होती है, सबसे पहले इंसान दोस्त को कॉल करता है कि यार जरा पहुंचो, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया.
12: स्पेशली द इमिग्रेंट्स फैमिली लाइक
11: हम,
12: एग्जैक्टली, वी आर अवे फ्रॉम आवर होमलैंड, वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिली, वी डोंट हैव अ फैमिली हियर, तो वी हैव अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ रिलेटिव्स अराउंड अस हियर इन इंग्लैंड. तो आवर नेबर्स आर आवर फैमिलीज.
11: और इवन हमारे मजहब में है कि आपके घर के साथ जो 10 घर आते हैं वो आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं. और पड़ोसियों का हक तो बहुत ज्यादा है हमारे मजहब में भी. हर अच्छी चीज उनके घर भेजने का है, हदिया देने का है, तोहफे देने का है, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आने का है, और ये हमारे रिलीजन का एक पार्ट है.
12: और सो मच सो के इफ यू नो दैट योर नेबर is not as affluent as you are, and if you are eating something very special, very good, you don't show it off to your neighbor so that they don't feel it inside that they are having a very good food or having a very good time with the whole family.
11: ताकि उनको महसूस ना हो,
12: उनको इनफीरियोरिटी का महसूस ना हो,
11: ताकि उनको कुछ महसूस ना हो, उनको कोई दुख ना हो, उनको तकलीफ ना हो. हमें तो ये भी हुक्म है कि अपने, मतलब अब हमारे ऊपर तो पड़ोसियों का इतना ज्यादा हक है कि हमारे शोर से वो तंग ना हो, हमारी किसी हरकत से उनको कोई परेशानी ना हो, जहां तक हो सके हम उनका ख्याल रखें, क्योंकि ये सारा हमारे मजहब का हिस्सा है. तो यस, फैमिली और फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा की जो सहेलियां थी उन तक भी, उनके उनकी दोस्तों तक भी वो उनको गिफ्ट्स भिजवाते थे. ये तो हमारे हदीस में भी है कि वो उनको तोहफे भी भिजवाते थे, उनको चीजें भिजवाते थे, उनको वेलकम करते थे. तो पड़ोसियों का और दोस्तों का तो बहुत हक है, और यही पड़ोसी और यही दोस्त होते हैं जो हार्ड टाइम्स में आपके साथ खड़े हो जाते हैं. और अगर आप बहुत लकी हैं और आपको बहुत ही सिंसियर फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो देन दोस फ्रेंड्स एंड नेबर्स आर योर बैक सपोर्ट, योर बैकबोन, आपको खड़ा करने में ये बड़ा हेल्प करते हैं.
12: तो देखिए, दिस इज द रीजन के हमारा मजहब भी हमें हुकूकुल इबाद का जो है वो बहुत ज्यादा दर्स देता है कि ये हुकूकुल इबाद ही हैं, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, लोगों की तकलीफ में उनका साथ देना, जो एक अच्छा इंसान बनाने में, क्योंकि अ पर्सन इज व्हाट इज हिज एनवायरमेंट इज अबाउट. तो आपके अगर एनवायरमेंट में अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव, सच बोलने वाले, अपना लेन देन अच्छे से करने वाले, तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम. यू आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम योर एनवायरमेंट. इफ यू आर देयर इज अ वेरी ओल्ड कोटेशन दैट वी ऑलवेज कम अक्रॉस, इफ यू आर हैविंग फ्लावर्स इन योर फेस यू आर गोइंग टू यू विल स्मेल लाइक फ्लावर्स द होल डे, बट इफ यू जस्ट टच द कोल यू कांट गेट रिड ऑफ दैट ब्लैक कलर फॉर द होल डे लॉन्ग.
11: बिल्कुल.
12: सो इट्स द कंपनी दैट यू आर सिटिंग इन, इट्स द पीपल दैट यू आर मीटिंग अप विद.
11: बिल्कुल, इसमें सही है. इसीलिए कहते हैं ना कि पड़ोसी तो चलो मिल जाते हैं, साथ वाला घर है, अब हम निकाल भी नहीं सकते. लेकिन ये है कि दोस्ती बहुत एहतियात से करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. क्योंकि व्हाट आवर फ्रेंड्स आर वी आर, जो हमारे दोस्त होते हैं हम वैसे होते हैं. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. अगर आपने सुना है,
13: बिल्कुल सुना.

0: करती हैं आप?
1: ऐसा ही है, जब आप यू ऑलवेज फॉलो व्हाट यू आर यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर फैमिली, आपको आपकी फैमिली अच्छे का भी बताती है, बुरे का भी बताती है, तो कीप योर सेल्फ, स्टिक टू दोज गुड मॉरल्स, गुड प्रीचिंग्स एंड कीप योर सेल्फ इंटेग्रल टू योर फैमिली, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो अब देयर इज वन मोर ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, दैट इमिग्रेंट्स लाइक अस, दे मूव टू यूरोपियन कंट्रीज एंड देन USA एंड कैनेडा, एंड the result of which is one of the results is the intercultural marriage.
0: बिल्कुल, ये भी होता है. अब क्या कहते हैं इसमें, मैंने बल्कि खुद देखी है बहुत सारी, मेरी फैमिली में भी है और मैंने बहुत सारे दोस्तों में भी देखी है. मेरी एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान से, मैरिज उनकी चाइनीज से हुई है, तो टोटली दो डिफरेंट, यानी ईस्ट वेस्ट वाला हिसाब है वहां पे. तो दे हैव सो मच इन द बिगिनिंग, एक्चुअली दे बिकॉज शी डिडंट नो मच ऑफ चाइनीज एंड ही डिडंट नो मच ऑफ इंग्लिश, सो दे वर कम्युनिकेटिंग इन साइन लैंग्वेजेस. तो उनके इतने मजे के इशारे होते थे, साइंस होते थे, खाना खाने के, मिलने के, या जाने के, या बाजार जाने के. तो यस, दे आर लॉट्स ऑफ फैमिलीज,
1: बट गूगल ट्रांसलेट हैज मेड एवरीथिंग
0: सो इजी. बट बिफोर गूगल ट्रांसलेट इट वॉज लाइक लिटरली
1: मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ मैरिजेस, बट आई वुड से इन माई ओपिनियन के जब उनके बच्चे दे ग्रो अप इन डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट कल्चर्स, टू थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दे आर ऑलरेडी बिकमिंग एक्सपोज टू अ वेरी यू नो ग्रेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं विद All two, three languages that they speak.
0: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. अब जिस तरह मैंने कहा कि मेरी फैमिली में भी बहुत हैं, इंडिया से भी हैं, फिलिपाइन से भी हैं, पोर्टोरिकन्स भी हैं, चाइनीज भी हैं. तो जब हमारी फैमिली इकट्ठी होती है तो वो एक नहीं होती खिचड़ी पकी हुई, आलू भी है, मटर भी है, प्याज भी है, तो वो हर तरह के फ्लेवर इकट्ठे हो जाते हैं. एंड आई एम लकी टू हैव विटनेस सो मेनी कल्चर्स.
1: And you know, and you get to know their cuisines, you get to know their the cultures, the way they dress up,
0: exactly.
1: The way they celebrate their festivals,
0: different festivals,
1: huh. And their national festivals, and how do they do their cultural festivals, and then their religious festivals.
0: बिल्कुल,
1: it's so interesting.
0: अब आप देखिए ना, अब जो मेरी फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो चाइनीज है, तो वो हस्बैंड इज आल्सो लाइक चाइनीज, बट इन चाइनीज ईद कल्चर इज डिफरेंट एंड आवर्स इज डिफरेंट. तो उनका भी ये होता है कि उनके घर भी जाओ तो दो डिफरेंट कल्चर्स पल रहे होते हैं, ठीक है. एंड इट्स रियली नाइस, क्योंकि आप एक, हम तो सिर्फ एक अपना तरीका करते हैं ना, सेवैयां पकाई, नमाज पढ़ी, गले मिले, बच्चों को ईद ई दी, तो उनका भी होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप भी होता है, थोड़ा डिफरेंट वे भी होता है. तो इसी तरह अगर आप किसी और कल्चर में जाएं तो बच्चे दो दो ईदियां दो दो मुख्तलिफ स्टाइल से मनाते हैं, शादियां दो डिफरेंट तरीकों से होती हैं. तो ये ब्यूटी है, लेकिन इन सब चीजों को एक चीज कनेक्ट करती है, वो है फैमिली, ठीक है. ये एक फैमिली बन रही है ना, जब आप शुरू करें हजरत आदम अलैहि सलाम से, तो अल्लाह ताला ने भी सबसे पहले एक फैमिली ही क्रिएट की थी. हजरत आदम अलैहि सलाम आए, फिर बीबी हवा आई, फिर एक फैमिली बनी, फिर कबीले बने, फिर उन कबीलों के फैलाव से मुल्क बने, और फिर एक दुनिया आबाद हुई. तो फैमिली का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये तो हजरत आदम से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये रहती दुनिया तक रहेगा.
1: बिल्कुल. एंड ऑन अ वेरी लाइटर नोट, फैमिली इज वेयर लाइफ बिगिंस एंड द लॉन्ड्री नेवर एंड्स.
0: इसमें तो है फैमिली है तो सब कुछ है. तो अगर हम देखें तो चाहे कोई भी फैमिली हो, न्यूक्लियर हो, सिंगल पेरेंट हो, मल्टी कल्चरल हो, मल्टी फेथ हो, कोई भी हो, फैमिली इज फैमिली.
1: तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट असाइनिंग रोल्स टू फैमिली मेंबर्स, डज दिस वर्क, या
0: बिल्कुल
1: हम ये कहें कि ये सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, या फिर रोल्स असाइन नहीं होने चाहिए, या फिर
0: अगर आप रोल असाइन की बात करती है ना, तो जहां तक मेरा ख्याल है, आप किसी को बिठा के ड्यूटीज नहीं दे सकते हैं. इट्स मोर ऑफ रियलाइजिंग, ठीक है, आप जब एक फैमिली बनी है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, अब आप लिख के तो नहीं देंगे तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, तुमने ये करना है, मैंने

0: ये करना है, वो ये होता है कि जब दोनों पार्टीज रियलाइज करें कि देखो हमने इसकी हेल्प करनी है या मैंने इसकी हेल्प करनी. यूजुअली ये हमारे यहाँ एक कल्चर सेटअप है अनफॉर्चुनेटली कि मेन आर लाइक ट्रीटेड, दे आर लाइक किंग्स. अल्लाह ताला ने मर्द को एक मकाम दिया है, लेकिन उस मकाम के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डाली है अपनी वाइफ के या अपने स्पाउस के प्रॉब्लम्स को समझने की. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं थे कि सिर्फ प्रॉफिट थे, लोगों को दर्ज देते थे, उनको सीधा रास्ता दिखाते थे, उनको आगे लेके जाते थे, वो अपनी अजवाज के साथ घरों के कामों में हेल्प भी कराते थे. बीबी आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके कई काम भी अंजाम देते थे. सो ये तो बात होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की. ठीक है, जब आप फैमिली क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करें ना.
1: But what about the thing that when you are brought up in a certain culture jahan par the men are not, you know, they feel ashamed of
0: in the kitchen
1: doing any house chores
0: bilkul.
1: and things like that, especially in the south Asian culture.
0: Bilkul, yes, aise hai. I think it mostly goes to the woman. Ab aapko badi interesting baat batau, agar hum tarbiyat ki baat karte hain to usme zyada aata hai haath mothers ka. ठीक है, अगर मदर्स उस तरबियत को करेंगी जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो उस सूरत में तो फिर आप कह सकते हैं ना कि हमारी ही गलती आती है कि हमने अच्छी तरबियत नहीं की. ठीक है, तो उस सूरत में फिर अगर हम इस तरह से बात करें तो फिर सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, स्पेशली बेटों को responsibilities share karne ki.
1: It is, I would say it is the need of the day that they,
0: Bilkul.
1: the mothers raise their children, especially boys like that.
0: aisa hai ki hamara ye bahut long hai discussion bhi long hai, bahut sari hai, isme bahut sari cheeze bhi discuss karni hai, lekin hamare program ka waqt ab khatam hota hai
1: aur aapko hum ek mini reflection ke sath chhodte hue ja rahe hain. आप अपनी फैमिली में किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं? What is one thing that you are grateful about your family? Think and
0: appreciate.
1: Yeah, appreciate. Because even in Quran, it is said that if you are grateful, I will surely increase you. If you are grateful about something, Allah is going to increase that certain thing in within you or with your family, whatever it is. इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम का जो है वो वाइंड अप करते हैं. और
0: अगर आपके कोई भी सवाल है, सजेशन है या कोई भी चीज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन द अबव नंबर्स
1: 07779481822. इसके साथ ही अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे काइंड, स्टे कनेक्टेड एंड रिमेम्बर, होम इज नॉट अ प्लेस, इट्स द पीपल.
0: Exactly. और मेरी तरफ से अफशा इरफान और हाजरा तलाल की तरफ से अल्लाह हाफिज.
2: कमिंग अप नेक्स्ट, हदीस एंड दुआस. दिस इज इंस्पायर FM.
3: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.